ओमेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

आर्यंधा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला के निश्चित तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे यही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

102.2 MHz पर ये तो हाँ सारे अंदा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट हो तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

रहा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन बनी रहा कने सुन दे रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 MHz पर ये तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुण।

0: 分。लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: तकलीफ चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ ही सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर, मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ, बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों
7: सर? ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे,
10: देखो इधर भी।
9: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
0: चलो बच्चों, खाना लग गया। पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
2: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
0: अरे, ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती है सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
11: सुनो
2: है?
11: तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
11: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
11: रेडियो और अखबार में क्या फर्क?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
11: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
11: बस गेस कर रहा था।
2: अरे गेस भी
12: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: क्या चीज थी मिला के नजर भुला दी।
1: हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी।
0: वो क्या चीज थी मिला

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझ

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हटकर दामन न छोड़ा, ये करती है क्या लाहा।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहानी नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: लेकिन वो बात कहाँ।
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा, जब सब माँ को पता है

0: कि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
3: हाँ बोलिए।
2: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
3: 10 लाख? सच्ची?
2: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
3: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
2: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
3: ओके।
2: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
3: अच्छा
2: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
3: अच्छा, ये लिंक?
2: यस सर।
4: मछली तो फंस गई।
5: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
6: चलो बच्चों, खाना लग गया।
7: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है,
8: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
6: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

91.9 तो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो आप सभी की आज की सुबह बहुत ही अच्छी सी हुई है ये उम्मीद करते हैं जी दोस्तों, और इसी के साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं जी दोस्तों। तो आज सुबह की शुरुआत वैसे तो बहुत ही प्यारी सी बारिश के साथ हुई है और बहुत ही काले काले से इस समय बादल छाए हैं, मौसम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी तो सुबह हुई ही नहीं है जी दोस्तों। तो आज 4 जुलाई 2026 का दिन बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम में इस बातचीत और मनोरंजन भरे सफर को शुरू करते हैं कुछ खास मनोरंजन भरे गीतों के साथ। तो आइए दोस्तों देर किस बात की है, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत और शुरुआत करते हैं मनोरंजन की इस प्यारे से गीत के साथ। उसके बाद ढेर सारी बातें और ढेर सारी जानकारियां आप सभी का इंतजार कर रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और दोस्तों मौसम की बात करें तो आंखों देखा हाल वैसे तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, लेकिन हाँ बहुत ही एक कहते हैं ना कि पता नहीं लग रहा है कि सुबह हो चुकी है, इस तरह से काले काले से बादल हैं और बारिश जो है वो भी लगी हुई है, कहीं कहीं लगी है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लगी हुई है। तो इस तरह से मौसम का हाल है। और अगर हम धर्मशाला के तापमान की बात करें तो लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी धर्मशाला के तापमान को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। और दोस्तों ऐसे मौसम में हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है, हर बार इसलिए याद दिलाना पड़ता है आपको, क्योंकि कई बार हम अपनी मनमानियों के चलते, अपनी स्टंटबाजी के चलते अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं कि लोग जो है ना घूमने जाते हैं कहीं भी या फिर इंजॉय करने के लिए जाते हैं तो मना करने के बावजूद भी वो गाड़ियां लेकर पानी में, मतलब इतना पानी का बहाव होता है, लेकिन नहीं, वो एक तरह से जिद में कि नहीं हम इस पानी से गाड़ी को पार करके दिखाएंगे या बाइक को पार करके दिखाएंगे या जो भी उनके पास व्हीकल होती है, तो उस तरह से वो अपनी ईगो पे जो है बात को ले जाते हैं और इस तरह की जो है हरकतें करते हैं या सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसी का बुरा नहीं कर रहे होते हैं, किसी की जो है एक किसी को चैलेंज तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ा चैलेंज हम खुद की जान के साथ कर रहे होते हैं, खुद की ज़िंदगी के साथ कर रहे होते हैं। तो ये जो जिद, ईगो, घमंड ये जो होते हैं ना दोस्तों, इसके चलते सिर्फ और सिर्फ हाथों में क्या रहता है, कुछ भी नहीं, अपनी जान तक हाथों में नहीं रहती है। वो जो जिद में हम पानी के बहाव में चले तो जाते, हमें आइडिया तक नहीं होता है। बात करें हिमाचल की दोस्तों, या हिमाचल धर्मशाला की ही बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ नदियों का पानी या कहीं भी वो कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो उस पानी का बहाव जो है वो किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं। तो लोग उन्हें एक तरह से अलर्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं कि नहीं हम अपने वहाँ भी इस तरह से इंजॉय करते हैं तो हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन हर कहीं का माहौल, हर कहीं की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखनी होती है। तो कहीं भी घूमने अगर आप जा रहे हैं और वहाँ के लोग आपको सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बातों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, वो एक एक बात को जानते हैं, तो वो आपके इंजॉय में खलल नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए बातें कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जान है तो जहान है और जान नहीं तो कुछ भी नहीं। खुद के साथ साथ हम बहुत सी जिंदगियों को दाव पे लगा देते हैं, बहुत से लोगों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हम अकेले ज़िंदगी से नहीं जुड़े, हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं। तो इस बात को कभी दिमाग से मत निकालिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, तब आप 100 बार सोचेंगे कुछ भी गलत स्टेप लेने से पहले। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से, खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, ये बातचीत और मनोरंजन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। 9:20 हो चुके हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।
1: मिलेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मानसून को लेकर अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें हाल ही में 7 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वे कल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इससे राज्य की समृद्ध विरासत व विशिष्ट उत्पाद पहचान को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 1 जिला 3 उत्पाद की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना व स्थानीय उत्पादों के बाजार का विस्तार करना है। इस पर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित निर्यात संवर्धन अभियान के तहत भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों व जिला आधारित उत्पाद पहलों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों सहित निर्यात संवर्धनों कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य में व्यापार को सुदृढ़ करने, निर्यात बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने सहित निवेश आकर्षित कर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहलों व आवश्यकताओं को विस्तार से रखा। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के सोलन, सिरमौर और ऊना जिले में 4 प्रस्तावित औद्योगिक समूहों के परियोजना प्रतिवेदन अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही उन्हें केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार इस महीने 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है। यह ऋण विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ़कर 1,11,900 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। कर्ज की ये रकम 13 साल बाद ब्याज सहित लौटानी होगी। नीट पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज शाम को शिमला में मशाल जुलूस निकालेगी। इस मार्च में प्रदेश मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह मशाल जुलूस 6 बजे शेरे पंजाब के पास से शुरू होकर रिज मैदान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और अब नगर पंचायत और नगर परिषद में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित BDC अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।
2: भाजपा की जिला परिषद भी बनी है, कई कई जिलों में बनी है, MC उनकी बनी है, वहाँ तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे बेशक हमारी बहुमत नहीं थी, को बहुमत मिली तो उन्होंने बनाए, यहाँ पे हमारी है, वहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो आरोप लगाने की आदत बन चुकी है, मगर इनको जो अंतर आज भाजपा के अंदर है, एक ये एक दूसरे में की के प्रतिस्पर्धा में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने ग्रुप को ऊपर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मगर इसका कोई औचित्य नहीं है। बेबुनियाद आरोप है, जनता को भ्रमित करने के लिए है।
1: जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद यात्रा की शुरुआत तड़के ही दोनों आधार शिविरों से हुई। आधार शिविरों से संबंधित उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने हरी झंडी दिखाकर पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों सहित साधुओं को रवाना किया। तीर्थयात्रियों ने बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे अग्रिम पंजीकरण करने के बाद ही तीर्थ यात्रा शुरू करें और अपनी निर्धारित यात्रा तिथियों का पालन करें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों व उनके सशक्तिकरण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवेदन व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दिव्यांगजनों के अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऊना के जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों, नियोक्ताओं, नवाचारकर्ताओं, संस्थाओं एवं संगठनों को प्रदान किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार और संस्थाएं 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी जिले के करसोग में 3 दिवसीय एंटी चिट्टा बैडमिंटन प्रतियोगिता का SDM गौरव महाजन ने कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना और युवाओं को नशे से रोककर उनका मानसिक व शारीरिक विकास करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों से खेल से जुड़ने और चिट्टे जैसे खतरनाक जहर से दूर रहने का आह्वान भी किया। 5 जुलाई तक खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में बीती रात से मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन से प्रदेश के 49 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जबकि 3 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। राज्य में वर्षा से पेयजल की 23 स्कीमें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष अन्य जिलों में मॉनसून की सामान्य वर्षा होगी। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मॉनसून की वर्षा को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर विभाग के साथ जल्द ही रिव्यू बैठक की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भूस्खलन और सड़क बाधित होने की संभावना वाले क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी तैनात की जाएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। उन्होंने ये भी कहा कि से बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष रूप से फोकस रखा जाएगा, ताकि बागवान अपनी फसलों को मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकें।
2: पूरी तरीके से तैयारी है मेरी, अभी हम लगातार उस पर डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं एक दो दिन में मैंने पूरी रिव्यू बैठक रखी है डिपार्टमेंट के सभी चीफ इंजीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, SCs के साथ, और उसमें हम पूरा एक रिव्यू लेंगे। जहां पर मशीनरी लगनी है, चाहे उसमें JCB लगनी है, पोकलेन मशीन लगनी है आपके, और उसमें एक्सकोवेटर्स लगने हैं, वो लगाए जाएंगे, इन एंटिसिपेशन लगाए जाएंगे। पर्टिकुलरली जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके है, वहां पे खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी दुर्घटना ना हो।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, स्कूल बंद होने पर सरकार को लौटानी होगी दान में मिली जमीन। जबकि पंजाब केसरी की एक खबर है, आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश। अमर उजाला की एक सुर्खी है, हिमाचल में जॉब ट्रेनी को भी 15 दिन का मिलेगा पितृत्व अवकाश। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, बीमारी के निदान में हो जीरो वेटिंग। वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, किन्नौर में लगातार दूसरे दिन फ्लैश फ्लड, मलबे में 2 गाड़ियां दबी। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द है, मानसून की भयंकर शुरुआत, 3 दिन में 14 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उठाए व्यापार पर निर्यात संवर्धन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए इस महीने लेगी 700 करोड़ रुपए का ऋण। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा में दर्शन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन व नामांकन किए आमंत्रित। और मौसम विभाग ने सोलन और सिरमौर जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। लोक निर्माण विभाग मॉनसून को लेकर अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही ढेर सारी जानकारियों के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं जी। दोस्तों, 9:32 हो चुके हैं और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी अपने अपने रेडियो सेट से डेली रूटीन के साथ एंजॉय करते हैं। तो आइए दोस्तों, बातचीत का ये सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। और जिंदगी में जैसे कि खासियत के साथ सुबह की शुरुआत होती है, नए पलों की शुरुआत होती है, और नए शुरुआत के साथ नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां भी हमारी जिंदगी में अक्सर दस्तक देती हैं। तो सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो क्या सच में आपके भीतर शांति होती है, या फिर जैसे ही आंख खुलती है मन भागना शुरू कर देता है कि आज क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, काम कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, और फिर बिना कुछ हुए भी मन थक जाता है। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। चेहरे पर मुस्कान रहती है लेकिन भीतर से एक बेचैनी चलती ही रहती है, बस चलती रहती है और मन को बेचैन करती रहती है कि क्या होगा, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक इंसान हर सुविधा मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाता? क्यों क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? दोस्तों, छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन इन शब्दों में बहुत गहरी बात आप सभी तक पहुंची है कि आज के इस समय में, इस भागदौड़ के समय में हम सबके पास नहीं, ना सही, लेकिन कुछ लोगों के पास हर सुविधा है, हर एक फैसिलिटी उनके घर में है, उनके पास है, उनके कदमों के पास है, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहते हैं। उनके मन में वो उत्सुकता, बेचैनी उन्हें हर पल परेशान करती है। ऐसा क्यों? हम पैसे कमाने के लिए भागते हैं, हम सोचते हैं कि पैसे होंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन पैसे होते हुए भी वो संतुष्टि, वो एक बोलते हैं ना कि सुकून, वो सुकून नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और कुछ लोगों की हम बात करें तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी या एक छोटी सी खुशी में भी खुद का सुकून जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो क्या फर्क है आखिर हम इंसानों में, यूं कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारी सोच में? क्योंकि हम लोग जो है ना दोस्तों, जितना ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं उससे ज्यादा वो इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। जिस तरह से कभी कल नहीं आता हमारी जिंदगी में, क्योंकि वो कल कल में ही चला जाता है, तो उसी तरह से हमारी जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं, कभी खत्म नहीं होती। मन करता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो शायद हमारे पास हर एक फैसिलिटी होगी, हमारे पास जॉब होगी, हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, सारा कुछ होगा, तो शायद हमारी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। लेकिन जैसे बड़े होते हैं वो चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं, फिर मन करता है कि एक अपना बढ़िया सा एक घर हो तो क्या बात है, या एक अपनी व्हीकल हो, अपनी एक मतलब कि इंडिपेंडेंट लाइफ हो, वो सब भी मिल जाता है तो फिर। और ये इन लोगों के पास इतना बड़ा घर है, इतना आलिशान घर है, इनके पास नौकर हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता। तो हम मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो ये इच्छाएँ हैं ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती। जिस सुकून को पाने के लिए हम भाग रहे हैं, न जाने कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन वो सुकून फिर भी नहीं मिल पाता क्योंकि संतुष्टि नहीं है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं है। तो सबसे खास बात कि जो भी आप काम कर रहे हैं सबसे पहले तो उसमें संतुष्ट होना सीखिए। जितना आपके पास है उतने में खुश रहिए, क्योंकि और पाने की इच्छा में और पाने की इस गुमान में हम जिंदगी का कीमती समय खो देते हैं। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते करते हम खुद की पहचान ही कहीं ना कहीं खो देते हैं, भूल जाते हैं। तो है ना कितनी खास बात दोस्तों। तो इस बात पे ध्यान देना और सोचना हमारा काम है। तो ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे और जो आपके पास है जितना भी है उसमें आप खुश रहना सीखेंगे, उसी में आप अपनी खुशियाँ एंजॉय करेंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो है उसे गवाइए मत और पाने की इच्छा में। और पाने की इच्छा में जो हमारे पास थोड़ा बहुत है ना, वो भी हाथों से चला जाता है और फिर मन यही सोचता है कि काश उस समय खुश रह लिए होते। तो काश के साथ जीने से बेहतर है कि खुश होके जिया जाए। तो आई दोस्तों इन्हीं बातों के साथ, और भी एक बात बहुत खास है, जरूर बात करेंगे। बहुत ही एक कहते हैं ना गंभीर सी बात है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ी बात है। तो ज़रूर उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए और बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ रहने वाला है। क्योंकि हमारी जिंदगी से जुड़ी जो खास बातें होती हैं अक्सर वही हमारे लिए जो है एक आसपास की बातें तो हम जान ही लेते हैं, लेकिन जो अपने भीतर चल रही बातें, अपने आसपास जो हम व्यवहार कर रहे होते हैं उससे अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके, अपनी सोच को बदल सकें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। तो ज़रूर जानेंगे, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 MHz पर।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों एक सवाल आप सभी से इस प्यारे से गीत पे जाने से पहले पहुंचाया था आप सभी तक, तो जरूर आप सभी ने उस पे सोच विचार किया होगा जी। दोस्तों तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी खुद को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग एक छोटी सी परेशानी में भी खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, बिखरा हुआ महसूस करते हैं। क्या सोच में डिफरेंस है या फिर नज़रिए में डिफरेंस है? आखिर कहाँ जो है ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? क्या खुशी किसी चीज़ में छिपी है, किसी व्यक्ति में, पैसों में, या फिर ये मन की कोई अवस्था है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? जी दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, समझ लीजिए उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। तो जी दोस्तों, आप अपने मन को किस तरह से समझते हैं, आप अपने मन को किस तरह से जानते हैं, जरूर ये भी एक और सवाल दोस्तों, सवालों का सिलसिला, क्योंकि जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे जिंदगी को समझ नहीं पाएंगे, और जिंदगी को जीने के लिए उसे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए इसी बात के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे दोस्तों, और रुख करते हैं जानकारियों की ओर, क्योंकि मनोरंजन और बातचीत के साथ साथ जो है हमारे लिए जानकारियां भी बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इससे मरीजों को समय पर और बिना किसी असुविधा के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश सरकार आवश्यक श्रम शक्ति और आधुनिक निदान उपकरण उपलब्ध करवा रही है तथा विभाग को इन आवश्यक सेवाओं में प्रतीक्षा समय समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय IGMC शिमला तथा चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। चिकित्सकों से निदान सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा मरीजों के लिए शून्य प्रतीक्षा समय के लक्ष्य को साकार करने के सुझाव और सहयोग भी मांगे। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के भीतर ही उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है, ताकि उन्नत उपचार के लिए मरीजों को हिमाचल से बाहर ना जाना पड़े। जी दोस्तों, कई बार इमरजेंसी में जो है बाहर जाने की ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर कोई उस सफ़र को पार नहीं कर पाता है ना, क्योंकि हर किसी का स्टेटस अलग होता है, हर किसी की ज़िंदगी की कहानी अलग अलग रहती है। तो कोई मजबूरियों के कारण, कोई अपनी फैमिली सिचुएशंस के चलते इलाज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब हमारे आसपास ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी तो शायद बेहतर हो सकता है, किसी की जान बच सकती है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। जी दोस्तों, तो हमारे कई बार छोटी छोटी लापरवाहियाँ भी किसी की जान के नुकसान की जिम्मेदार बन जाती हैं, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं, कोई ऐसी भूल चूक ना करें जिससे किसी को मुसीबत में आना पड़े। तो फिलहाल दोस्तों, हमें अपनी बातचीत से आपको मुसीबत की ओर लेकर तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो बातचीत भी बहुत सारी बाकी है और जानकारियां भी बहुत सारी हैं। तो फिलहाल आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

दोस्तों इस प्यारे से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के साथ एक बार फिर से अपनी बातचीत की ओर रुख करने वाले हैं और सवालों के साथ इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आप सभी यही सोच रहे होंगे कि जवाब किस तरह से और कब मिलेंगे, तो जवाब आपको खुद से ही मिलेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों के जवाब दूसरों से मांगते रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इन सवालों के जवाब तो आपको खुद को खुद से ही मांगने होंगे। फिलहाल दोस्तों मैंने बात की थी कि एक और खास बात आज के कार्यक्रम में हम करने वाले हैं और जो कि जुड़ी है बच्चों की जिंदगी से। तो बच्चों की जहां बात आ जाती है दोस्तों, तो हर बात जो है वो फीकी सी लगती है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से जुड़ी बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी लगती है। तो आज के समय में बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी क्या बात हो सकती है दोस्तों, खास करके बच्चे जो कि डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें फ़ोन में हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें सतर्कता के लिए मिलती है, लेकिन हम जो है उसका मिसयूज़ करते हैं, उसकी एक तरह से गलत यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जाने की एक वजह बन जाती है। तो कैसे बचाया जाए और क्या क्या ऐसे स्टेप्स जो हैं हमें लेने चाहिए जिससे कि बच्चे उस चीज़ से दूर रह सकें, तो ज़रूर दोस्तों ये बहुत ही खास बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। बहुत ही प्यारी सी दिन की शुरुआत बारिश की बूंदाबांदी के साथ तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी आप सभी कर रहे हैं। जी दोस्तों, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं जिनकी सुबह 4 बजे से शुरुआत होती है हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी देते हैं। कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी हमें बताते हैं और किस तरह से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए वो भी सजेशंस जो हैं वो हमें बताते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अच्छाइयों के साथ साथ जो कमियाँ रहती हैं उस पर भी गौर करना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि कमियों को जाने बिना जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जी दोस्तों, और कार्यक्रम में हम बहुत ही खास आज की बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर कुछ लोगों की जिंदगी किस तरह से होती है, मतलब कि कुछ बहुत सारी परेशानियों के बाद भी खुश रह लेते हैं तो कुछ छोटी सी परेशानी के बाद भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये सवाल आप सभी के लिए था दोस्तों। तो क्या सोचा आपने, क्या विचार किया इस पे कि किस तरह से जो है हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है या फिर उस पे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की जा सकती हैं। तो दोस्तों, जिसने अपनी मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और यही बात आज आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज आप जानेंगे दिन भर खुश रहने का असली रहस्य। किस तरह से जानेंगे? जब आप अपने मन को जानेंगे। जी दोस्तों, अपने आप को जानना, अपने मन को जानना, ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि दूसरों को जानना एक छोटा सा काम है। और साथ ही हम बात कर रहे थे दोस्तों कि बच्चों को किस तरह से सोशल मीडिया या फिर डिजिटल दुनिया से जो है वो बचाना है। आखिर क्यों बचाना है ये भी सवाल है, क्योंकि डिजिटल तो आजकल हर कोई मतलब शौक के साथ हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर हमें उन्हें क्यों बचाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बच्चों को डिजिटल दुनिया से बचाना जरूरी है या नहीं है? सवालों पे सवाल, क्या बात है, क्या आज के इस प्यारे से कार्यक्रम का रहस्य है कि बस सवाल सवाल सवाल और जवाब। तो दोस्तों, जवाब हमें खुद से लेने हैं, हमें खुद से मांगने हैं, अपने मन से मांगने हैं। और बात भी यही कर रहे हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया उसने जिंदगी जीना सीख ली, जिंदगी को समझ लिया, और आपकी जिंदगी एक बहुत ही प्यारे से सफर की ओर बढ़ गई। तो ये जानना, बात करना कितना जरूरी है दोस्तों, जरूर जानेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: आज हमारी शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना? मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया। और कहते हैं ना दोस्तों, रिश्तों में समझ हो तो हर रिश्ता निभाना आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता ना हो वहाँ रिश्ते टूटने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड निदेशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 21,000 रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति दी, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति दी गई है। जी दोस्तों, विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करने के लिए कहा गया है और ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों, इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो आइए दोस्तों, इस सफर को और भी प्यारा और भी खूबसूरत बनाते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो जैसे कि हमने बात की थी दोस्तों कि आज के कार्यक्रम में हम कुछ बातें बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई भी जरूर करेंगे। खैर, हम अपने मन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिजिटलाइजेशन जो है हमारी जिंदगी में, ये कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा हद तक सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर जनरेटिव एआई तक, डिजिटल दुनिया हमारे जीवन और स्वास्थ्य की दशा तय करने वाला मजबूत फैक्टर बन चुकी है। जी दोस्तों, इसके बिना सुबह की शुरुआत नहीं है और मन में चैन भी नहीं है। जिस मन को समझने की हम बात कर रहे हैं, आखिर वही मन अगर हमें एक दिन के लिए, सपोज करो कि एक दिन हमारे पास फोन ना हो, तो मन किस तरह से बेचैन हो जाता है। किसका फोन आया होगा, किसके मैसेजेस आए होंगे, किस तरह से फोन की एक्टिविटीज रही होंगी, मतलब काम हम कहीं और कर रहे होंगे लेकिन ध्यान हमारा पूरा फोन पे फोकस्ड होगा कि क्यों छूट गया, अब वापस जा नहीं सकते, और अगर मौका मिले तो हम ज़रूर वापस लेकर आएंगे। तो इस तरह से जो है हम इस सोशल मीडिया

और ऑनलाइन के माध्यम से ना, ऑनलाइन ये जो हमारी डिजिटल दुनिया बन चुकी है जिसमें कि हमारा असल में चैन तक खो गया है ना। हम ढंग से फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं, ना कुछ समय आराम से बैठकर उनके साथ बातें करते हैं। कोई भी रूटीन जो है ना वो परफेक्ट नहीं रही है, सारी ऐसी अस्त व्यस्त सी हो गई हैं चीज़ें। चाहे बच्चों की बात करें, चाहे बड़ों की बात करें, किसी की भी हम बात करें, हर कोई व्यस्त है इस भागदौड़ में, इस शौक में, इस देखा देखी में। तो दोस्तों, इसमें ये भी विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए और ज़्यादा सच है कि दुनिया भर में बचपन की डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा रीप्रोग्राम किया जा रहा और वही अब ये तय कर रही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, खेलते हैं और आपस में जुड़ते हैं। हमारा काम किसी भी टेक्नोलॉजी की निंदा करना नहीं है, लेकिन हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि डिजिटल वातावरण दूरगामी लाभों का वादा तो करता है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। जी दोस्तों, जहां चीजों के बेनिफिट हैं, वहीं चीजों के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। हमारा काम किसी भी चीज की बुराई करना नहीं है, किसी चीज को गलत ठहराना नहीं है, लेकिन दोस्तों अच्छाई और कहते ना कि हर पहलू को नजर में रखना, ये तो हमारा काम है। कुछ करने के लिए तो अभी देर नहीं हुई है, लेकिन केवल छोटे छोटे बदलाव करने का समय धीरे धीरे हाथों से निकलता जा रहा है। तो बच्चों की जिंदगी की हम बात करें तो जितना हम ढील जो है वो इस फील्ड में करेंगे, चाहे वो डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो जिस तरह से हम ये नज़रअंदाज करते जाएंगे चीज़ों को, तो वो समय हाथ से निकलता जाएगा। दोस्तों, डिजिटल उपकरण लर्निंग, कम्युनिकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में अवसरों का विस्तार कर सकते हैं, विशेष रूप से दूरदराज या संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए। वे कई युवाओं को ऑनलाइन स्पेस में रचनात्मक कम्युनिटी और जुड़ाव की भावनाएं भी दे करते हैं। ये विशेष रूप से उनके लिए मायने रखता है जो ऑफलाइन दुनिया में उपेक्षा का सामना करते हैं, लेकिन ये लाभ गारंटीड नहीं है। वे इस पर निर्भर करते हैं कि एक्सेस किसे है, तकनीकों को कैसे डिजाइन किया गया है और वे किसके हितों का पोषण करती हैं। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान देंगे, सारी चीजों पे एक गौर फरमाएंगे, तब हम जो है किसी भी फील्ड में आगे बढ़े तो शायद हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, इस बात पे थोड़ा सा विचार कीजिए और सोचिए कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है,

सुविधाएं जो हैं कहीं ना कहीं हमारे बेहतरी के लिए होती हैं, हमारे कुछ मुश्किलों को आसान करने के लिए होती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, हम अपने रिश्ते नातों तक को भूल चुके हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो जितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो अगर हम उतना यूज करें तो शायद हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, रुचिका जब बातें करने लग जाती है तो भूल जाती है कि आप सभी प्यारे प्यारे से गीत संगीत का भी इंतजार कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं ना, भूला घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से गीत की। और क्योंकि दोस्तों जिंदगी से जुड़ी बातें होती है ना, और इन बातों पे मुझे लगता है कि जितनी हम बात करें शायद उतना हमारे लिए बेहतर है। तो बात करना मेरा काम है लेकिन उस पर सोच विचार करना आप सभी का काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बात पे ज़रूर विचार करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाला कल, देश का आने वाला कल उनके हाथों में है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ, इस प्यारी सी बातचीत के साथ आगे, और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 ओमेगा हर्ट्ज।

तो सो 91.5 लव्ड ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही प्यारा सा ये सफ़र आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। दोस्तों रहस्य जो हमारे मन में छिपा होता है मन को समझने के लिए, लेकिन समस्या तो ये है कि हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब हम खुश रह लेंगे, जब पैसा होगा, जब लोग समझेंगे, जब सम्मान मिलेगा, जब समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन सच क्या है, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती, एक जाती है तो दूसरी आती है। अगर खुशी को आपने परिस्थितियों से जोड़ दिया तो आपकी खुशी हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगी, और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। जी दोस्तों, तो बिल्कुल अभी भी समय है चीजों को समझने का, खुद को संवारने का, क्योंकि अभी अगर समय हाथ से निकल गया तो जरा सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब कि आपकी खुशी आपके पास है ही नहीं, वो तो दूसरों की बातों पर टिकी है, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक मन कभी स्थिर नहीं होगा। जिसका मन बाहरी चीजों से बंधा है वो हमेशा दुख में रहेगा। तो आप दुख में रहना चाहते हैं या फिर खुशी के साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जरूर दोस्तों इस बात पे गौर कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं जो कि आपके मन के भीतर छिपे हुए हैं, तो उन तक जाइए, उन तक पहुंचिए। तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा

0: For more entertainment.
1: दोस्तों, तोहफा मोहब्बत का फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपने दिन की शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं, जो कि बच्चे, खास करके बच्चों की बात करें, क्योंकि इस समय जब बच्चे छोटे होते हैं तब समय होता है पेरेंट्स के पास उन्हें गलत रास्तों पे जाने से रोकने का, है ना। जब बच्चों को, पेरेंट्स को भी पता होता है कि वो किस तरह से किस ओर जा रहे हैं, लेकिन कई बार हम बचपना समझकर ये यूं ही कह देते कि अभी बच्चा है, अभी समझ नहीं है, तो आगे चलकर जब समझ आ जाएगी तब सुधर जाएगा। लेकिन वो समझ आते आते बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाता है और ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो हाथों से निकलती जाती हैं। तो दोस्तों, सरकारें जो है वो भी तेज़ी से ये स्वीकार कर रही हैं कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा अब एक पब्लिक हेल्थ अनिवार्यता बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला ऐसा नियम जो है वो लागू किया है, जिससे कि बच्चों की इस बढ़ती सोशल मीडिया की और या डिजिटल दुनिया की और बढ़त जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। बाकी खैर, समय बताएगा किस तरह से क्या होगा। तो इसके तहत दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट खोलने से रोकते हैं। फ्रांस भी 15 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून ला रहा है। इंडोनेशिया ने 16 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पेन ने ऐसा करने की योजना की घोषणा की है। आयरलैंड 16 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित एज रिस्ट्रिक्शंस और एज एश्योरेंस सिस्टम्स को विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों, हर कोई जानता है कि बच्चों की जिंदगी में एक छोटी सी गलती, छोटी सी पहल उनकी पूरी उम्र के लिए जो है ना नुकसानदेह हो सकती है या अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी का जो एक सोचने का तरीका है, मानसिक स्तर है, वो अलग अलग होता है। कोई हर पहलू को बहुत बारीकी से समझता है, तो कोई हर पहलू को सिर्फ एक एंजॉय के लिए, एक शौक को पूरा करने के लिए समझते हैं। तो ये हमें, जो बड़े हैं, बच्चों के साथ बड़े हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि बच्चों को किस तरह से किस फील्ड की ओर जो है वो बढ़ाना है। तो दोस्तों, यूके ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से संपर्क पर प्रतिबंध जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी किए हैं। दोस्तों, अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये जो सोशल मीडिया है, ये डिजिटल जो हमारी दुनिया बन चुकी है इस समय, इसमें बुराई क्या है? कुछ ज़रूरतमंद लोग इससे अपना घर चला रहे हैं, घर खर्च चला रहे हैं, क्योंकि इनकम जो है एक साधन है इसके ज़रिए उनका। तो सवाल ये नहीं है दोस्तों, हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है, बुरा है, और हम ये कह भी नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि किसके लिए इन पहलुओं को समझना, इस बारीकी को समझना ज़रूरी है। और ये तमाम उपाय जो है ना दोस्तों, इस बात पर बढ़ती वैश्विक सहमति को दर्शाते हैं कि डिजिटल वातावरण को प्रभावी गवर्नेंस, एज प्रोप्रिएट डिज़ाइन और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज और कल की टेक्नोलॉजी के प्रभाव की स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए जो है वो ज़रूरी रिसर्च को बढ़ावा देकर, देशों को तकनीकी सलाह प्रदान करके और सुरक्षित समान डिजिटल स्वास्थ्य वातावरण को मजबूत बनाकर इसका समर्थन कर रहा है। हमें समाधानों की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल दुनिया तटस्थ नहीं है, उसे किसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। कैसे संचालित किया जा रहा है और उससे कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं। ये तमाम फैक्टर्स हमारे जीवन के कई पहलुओं को आकार देते हैं जी दोस्तों। तो ये जो एक होड़ है ना, और खास करके हम किसके पीछे भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं कि इससे हम बहुत सारे पैसे कमाएं, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करें, औरों की तरह जो शौक हैं उन्हें पूरा करें, लेकिन उसी के चलते हम क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो गलत चीज़ें हो रही हैं।

क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए हम किसी भी अननोन पर्सन को ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन एक लगाव सा हो जाता है। और उसी लगाव के चलते जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उन्हें ये समझ नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो किसी के भी साथ अपनी हर एक बात शेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हम अपने घर की छोटे से कोने से लेकर हर एक चीज़ जो है वो ओपनली सबके सामने रख रहे हैं। तो आज ये चोरी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैसे? क्योंकि हम अपनी हर एक पर्सनल बात को प्राइवेट कर रहे हैं, हम अपने घर की हर एक चीज़ को पूरी मतलब पब्लिक के सामने रख रहे हैं। तो एक तरह से हम कहते हैं शुरुआत तो खुद करते हैं, बाद में पछताते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? बच्चों को भी बाद में समझ में आता है कि काश उस फील्ड की ओर हम ना गए होते, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। और आखिर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, ये बातें हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है और इस पे गौर करना बेहद ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चों को इस डिजिटल दुनिया से कैसे बचाया जाए। उनके स्किल्स पे काम कीजिए, उन्हें स्पोर्ट्स में बिज़ी कीजिए, जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस पे फोकस कीजिए, जिन्हें आप समझ सकते हैं, जिन्हें आप उनके लिए बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब इस दिखावे की दुनिया के चलते अगर आप एक ही फील्ड के पीछे भागेंगे तो अपने साथ साथ जो है बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी आप कहीं ना कहीं खिलवाड़ और समझौता कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बातें जानना, समझना, सोचना बहुत ज़रूरी है या नहीं है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे आइडिया से तो ज़रूरी है। बाकी आप सभी बहुत समझदार हैं दोस्तों और जानते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

बहुत ही प्यारा सा ये गीत करण अर्जुन मूवी से लिया था और आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका ने। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और बहुत ही खास बात आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं कि बच्चों को इस डिजिटल दुनिया से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए रूढ़िवादी, सेक्सुअलाइज्ड, हिंसक या वेद भाव पूर्ण सामग्री के बार बार एक्सपोजर से बच्चों के स्वयं और अपने आसपास की दुनिया की समझ को गढ़ा जा सकता है। एल्गोरिदम सटीक जानकारियों के बजाय ध्यान आकर्षित करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। प्रोफाइलिंग और टारगेटेड मार्केटिंग के लिए पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग चिंताएं बढ़ाने वाला है। साक्ष्य बताते हैं कि अत्यधिक डिजिटल संपर्क से विशेष रूप से किशोरों में एंजाइटी, अवसाद, खराब नींद, आक्रामकता और यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी कुछ हद तक बढ़ती जाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया, गेमिंग और एआई का उपयोग अकेलेपन को गहरा सकता है और ऑफलाइन रिश्तों को विस्थापित कर सकता है। ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार भी वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। एआई जनित एब्यूजिव कंटेंट और डीप फेक वाली सेक्सुअल या बुलिंग वाली सामग्री में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई प्लेटफॉर्म तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कि हानिकारक सामग्री के संपर्क से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुविधाएं नहीं हैं। दोस्तों, बच्चों की वेलबीइंग के मामले में जनरेटिव एआई जोखिमों और अवसरों दोनों को बढ़ावा देने वाला है। जिम्मेदारी से उपयोग किए जाएं तो विशेष रूप से बनाए गए एआई उपकरण शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों, एम्पैथी या सेल्फ कंट्रोल को लेकर उनका दीर्घकालिक प्रभाव फिलहाल तो अस्पष्ट ही है। वैसे में अगर उन्हें लेकर हम एक सतर्कतापूर्ण रवैया अख्तियार करें तो इसे इनोवेशन का विरोधी होना नहीं माना जाना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें आज के युवाओं की सुननी चाहिए। टेक्नोलॉजी के एक्टिव यूजर्स के रूप में वे डिजिटल वातावरण को जिम्मेदारी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जरूरी सुरक्षा दिशा निर्देशों को आकार देने के लिए युवाओं को अपने स्वयं के जीवंत अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। पेरेंट्स, केयर गिवर्स, स्कूल और कम्युनिटीज को भी इस बातचीत का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। हमारे बच्चों और युवा कोई बाजार की कमोडिटी नहीं है। ये वो ऐसे प्राणी नहीं हैं जिन पर कोई परीक्षण किया जाए। हमें मिलकर ही ऐसे डिजिटल वातावरण का निर्माण करना होगा जो उनके स्वस्थ विकास की रक्षा करें और उसमें उनकी मदद करें। हमारे आज के निर्णय आने

दोस्तों, उम्र, धन और ऊंचे पद से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। वास्तविक महानता उसके हृदय की विशालता में होती है। जो इंसान हर जीव के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध इंसान होता है। दौलत और पद केवल पहचान दिलाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र और दयालु स्वभाव ही असल में इंसानियत की पहचान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे।
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये ले।
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी

रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है।

0: दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: हेलो
3: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
2: हाँ बोलिए।
3: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
2: 10 लाख? सच्ची?
3: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
2: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
3: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
2: ओके।
3: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
2: अच्छा।
3: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
2: अच्छा, ये लिंक?
3: यस सर।
4: मछली तो फंस गई।
5: शिंगे
4: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
6: चलो बच्चों, खाना लग गया।
7: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
8: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
6: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों,

0: नमस्कार दोस्तों, 91 पे लव तो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि मैम अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं, तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल, उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ हमारे एक्चुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है और हमारी ऑफलाइन भी है, तो बेसिकली कुछ जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो मॉर्निंग में भी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के दौरान, और क्लिनिक स्टार्ट होता है अराउंड 12, सो फ्रॉम 12 टू 6 PM आई एम एट क्लिनिक। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, कुछ सेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो कुछ सेशंस काफी लाइट भी रहते हैं। हम हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: किसी को बहुत हंसाते हैं तो किसी को बहुत रुलाते हैं
0: देख लीजिए दोस्तों कि कितना मुश्किल ये दौर है कि किसी को हंसाना है तो किसी को रुलाना भी है जी,
1: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
0: जी।
1: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसके वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा। बस ऐसे करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में ही जाता है
0: जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
1: देखिए जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है
0: जी।
1: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी, जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशियंट साबित नहीं होगा। इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है। जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन सी पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
2: जी।
1: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स मी अलॉट रुचिका
0: जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही हैं, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
1: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा
0: ना? होंगे जी,
1: है ना
0: जी।
1: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
0: जी।
1: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
0: जी,
1: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन लेने हैं, जो लेसन को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
0: जी।
1: जिसके कारणवश ये सोचना कि अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ये तो डिसअपॉइंटिंग है या गुस्सा आ रहा है, ये तो थोड़ी बेवकूफाना वाली बात हो जाएगी
0: जी बिल्कुल। तो मैं इस बात पे आपको इसलिए लेकर आ रही थी क्योंकि आज हमारी जो ये बातचीत रहने वाली है वो इसी से जुड़ी है। और कई बार क्या हम आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं अपने आसपास, खास करके बच्चों को या युवाओं की हम बात करें तो बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उस पर रिस्पॉन्स दे देना और उस वजह से जो है सिचुएशंस बनने के बजाय जो वो बिगड़ जाती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: तो दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणामय महसूस होता है, तो कभी हमें ईर्ष्या होती है। तो ये सारे ही इमोशंस जो हैं ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में, लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी, और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
0: जी।
1: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूँ। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आवर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बीनीथ, एज एन इस मास्क के बीनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि
0: एक्सटर्नल,
1: डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहाँ से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहाँ से आएंगी? ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में होगा वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकता। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देते।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि गुस्सा।
0: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
1: अटैक कर
0: फायर करते हैं।
1: डेफिनेटली, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है? फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है, चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा ही
0: जी।
1: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन, इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट। अब इसी प्रकार से अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे? गुस्सा तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
0: कुछ भी हो सकता है।
1: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
0: जी।
1: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है। जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से सरलता से रख सकता है। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट। पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
0: जी,
1: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बनाई नहीं। प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है। आप नदी को देख लीजिए, ओपन है,
0: बिल्कुल।
1: समंदर को देख लीजिए, ओपन है। आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है। हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखाएं उसे। तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है। इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है। हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है।
0: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं, भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अक्सर यही बात
1: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे। एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर। तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
0: जी,
1: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं,
0: बिल्कुल सेंसलेस। जी तो दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर सी बात और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए, मतलब कि कुछ भी लोग क्या करते हैं, बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से अगर हम किसी और पे नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं। तो अभी अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं।

0: 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियाशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी,
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ट है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन Your anger will choose to express itself in a destructive way. इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। सो इट बिकम्स सो ऑब्जर्वेबल एंड सो मेजरेबल दैट हाउ एंगर इज इम्पैक्टिंग समवंस लाइफ। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी,
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकलेगी। यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारी नदी का प्रवाह कैसा है, हमारी नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए इजीली स्मूथली रिलीज किया जा सके विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द वे कि वी हैव टू टेक मेजर्स विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर फॉर द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकेंड एग्जाम्पल हमने दिया, अगर ये चीज वो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज, जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की. एंगर के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनीथ क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है, कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है, कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट. तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गई
1: आप हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डालने
1: वाले. हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और

0: क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है। अब जो चीजें पानी वाली हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी, गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें। आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी। उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस फ्लो में अगर आप ये चीजें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे हमारी ऑडियंस। तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है। गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते हैं या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है। देयर इज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली, आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो। सो देयर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देयर इज अ मेंटल टास्क। नाउ I have to pick or say my ego. My ego, हमारे अहम को चूज करना है, what is it that I want to give up first? The psychological challenge or the physical challenge. Physical challenge तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो give up करने का कोई option ही नहीं है, तो यानी कि I will keep on doing push-ups तब तक जब तक हमारा गुस्सा psychological level से give up ना हम करते, surrender जब तक हम ना करते, and this is something that actually works so well for me. वैसे जरूरी नहीं है कि सबके लिए सब चीज काम करे, इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए, खुद के लिए एक डीएस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
0: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहां पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज दैट एंगर एंड देन थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी।
1: जी, और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
0: बहुत जरूरी है,
1: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं या अपने क्या शौक हैं, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए या कोई भी हमारी हेल्थ इश्यू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है, वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते तो उन्हें बोल कर रखा होता है कि भाई जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो

जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 FM, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
0: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो येस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नज़रिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
1: जी,
0: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में है, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में है। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर कुछ है, सब चीज़ें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहाँ पर ये चीज़ें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब 2-3 एस्पेक्ट्स में आता है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वॉट दे कैन डू इज़ दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को ईदर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीज़ें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना, एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज़्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रैदर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी लोगों को डिसअपॉइंट करते होंगे। इसलिए अपने अंदर वो ओपननेस, वो एक्सेप्टेंस और रियलिज्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वो चीजें हमें जाननी होंगी कि जिस जिस वजह से हमें गुस्सा आता है, तो उससे फिर हमें खुद ही थोड़ा सा जो है बैक स्टेप लेने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, आप उन चैनल से एंगेज ही मत करिए जहां पर आपको पता है पांव रखते ही आपको
1: फिसलना
0: हार्म
1: है।
0: होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी तो बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे भी जब हमें लगता है कि आग से हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, तो हम जानबूझकर उसके आगे नहीं जाते हैं। तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता
0: डेफिनेटली वो
1: है।
0: फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा।
1: जी
0: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी।
1: जी तो अगर
0: ऐसा है,
1: बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है, और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए, तो आप आराम से वहां बैठकर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057।
1: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा।
1: जी दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है, और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं। तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच

जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल्स से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल्स से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।

92.2 MHz पर ए है दोहा सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दशो तो कार्यक्रम की जड़ा शुरुआत है से जरूर अहाँ करी थी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर करने जुड़ सकते कने अहाँ करने गलबात जड़ा से जरूर करी सकते दशो तो माटी दी मेह कार्यक्रम का जड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाहा करने जुड़ी सकते तो जरूर इस सफर करने जुड़िया कने गलबात जड़े से जरूर करा तो इसी गलबात करने हाँ पहले अपने कार्यक्रम का जड़ा आगाज है से करी लेंदे न फिर बाकी दियाँ जड़ा गल्ला न तिना जो तुह तक ले करी आते न कने फिर बड़िया सारिया गल्ला बातें तुह तक करनिया न कने जड़ा तुह दियाँ फरमाइशा न सभी जरूर तुह तक पहुँचानिया न तो शुरुआत कर दे न अपने कार्यक्रम दी इस प्यारे दे गीत कने प्यारी दिया फरमाइशा कने तुह सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा।

0: पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारी इस गीत जो भी जरूर एंजॉय चिड़े से करा देने न दर्शोताओं शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने की थी कन्ने इस गीते दी फरमाइश अहां जो आयु है व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा नाव है राधा कश्यप जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तिना तक हाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई थी है कने जरूर तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने न कने सफर तो तक रहा है 2 से 3 बजे तक अजकने दिने दी अहां गल करिए ता अजकना जेड़ा दिन है से तो हाँ वास्ते भी बेहतर खास है 4 जुलाई 2026 दी अहां गल करिए कने अहां दे जेड़ा अगले श्रोता न सभी अहां कने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कने गल बात हेलो नमस्ते जी जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तुह कुछ ते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी
1: गाड़ी ते बोला रहे कने नाम मेघनाथ है
0: जी मेघनाथ जी क्या काम कार लगे या तुहां क्या करा दे आज जी अच्छा प्रोग्राम में ता इंतजार करा दे थे
1: पानी होया और बरखा हो रही
0: है जी पानी ताली थोड़ा कटवा दी होया जी नहीं जी कुथी कुथी होई या थोड़ा थोड़ा जड़े से ओ दाना जी
1: अच्छा
0: जी जी ता और नोईता जी जी बरसात तो जड़ा से शुरू हुई हो ना जी जी इस वरिया वैसे भी बोला दे कि बरसात जड़े से काटी होनी है ना जी जी जी तो वैसे भी बरसात के मौसम च अपना जड़ा ख्याल है से ज्यादा रखने की जरूरत होंगी ना जी जी तो हम आवाज जड़े से बड़ी कम कम जड़े से सुनने दी
1: आवाज काट हो रही
0: जी उन ठीक हो दी जी जी जी ता बरसात दे मौसम च अपना जड़ा ख्याल है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी ना जी
1: हां जी हां जी
0: क्योंकि कई बार युवा पीढ़ी दी गल करिए ता बच्चे जड़ा न से नदी नाले तरफ जाते न वैसे तो सारे जो ही पता होंगे पर कई बार लापरवाही जड़ा से अहां जो बड़ा ज्यादा नुकसान देख रही जाती ना जी
1: गर्मी वाला सीजन है ना जी बच्चे पढ़ने वाले 10-12 क्लास वाले से चले जाने नदी में नहाने ना ना
0: जी जी
1: कने ऊपर पहाड़ पर भी हुंदी बरखा
0: जी
1: नौंदे नौंदे जान गाई आंदा कने फिर इसे हो भी आंदा
0: फरमाइश तो तक पहुंचा दे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी जी दर्शो तो अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अगले जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: ये तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दी फरमाइश। इस भजने दी फरमाइश हाँ जो आई हुए सुनील कुमार जी दी कने से रहने वाले ने कोठियाँ जलोड़ते दिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात ऊपर चिड़े से जरूर आई हो न। 4 जुलाई 2026 की गल करिए तो आज अहाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस तो जरूर ये उपर अहाँ गलबात करनी है कन्या अहाँ दे जेड़ा अगले श्रोता न तिना कन्या कर देन गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी हां जी ठीक है
0: जी। तुह कुत्थे ते बोला दे कने तुहांदा नाम की है जी?
1: मैं दा बठोला जिना पिंकी मेरा
0: जी। पिंकी जी क्या हाल चाल है डाडे वाले दे?
1: बस वधिया जी
0: जी। ता आज कणा जेड़ा दिन है से कदेया की गया तुहांदा कदेया की चलया? जी अच्छा ठीक ही चल रहा है जी।
1: जी जी।

कानून दशमलव 2 MHz पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे सुनिया ई प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश ए फरमाइश आ जो आई हुए दाड़ी ते कने तिना दा नावे मेघनाशी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने तुहा सारिया भी इंजॉय कीता कने आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस दे बारे च हर साल जेड़े से 4 जुलाई 2026 जो दुनिया भर च दिन जेड़े से आ बनांदे न दशो तो 2026 दी गल करिए या इस दी जेड़ा थीम है तिस दी गल करिए कि बनाने दी क्या थीम है। शांतिपूर्ण विश्व जेड़ा सहकारिता दिवस है जेड़ा नींव है से रखी हुए है शांतिपूर्ण आहा कोई भी काम कर दे न अगर सहकारिता एक दुए अंदर रखते न या समाज एक दुए का सहयोग जेड़े से होना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। अजकने दौर की गल करिए चाहे यहाँ खेती बाड़ी करते हैं अगर खेती बाड़ी यहाँ मिली जुली करी करते हैं तो तीसा खेती बाड़ी करने का जड़े से पता नहीं चलता कने अगर तीसी कमे जो हाँ किले करते हैं तो कुथी ना कुथी से काम जड़े से थोड़ा स्लो ही आंदा है तो ज़रूर हाँ इधर ऊपर गलबात जड़े से करा देना तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाहे कन्ने जुड़ी सकते कने यहाँ कन्ने गल बात जड़े से जरूर करी सकते कने इसी गल बात कने आगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइश आ जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्म शाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम एंजॉय करा दीन आपने रेडियो तो शशि कने जितने भी श्रोता फेसबुक लाइव कने जुड़े न तीना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। स्मय दी ओर नज़र अगर अहाँ दौड़ान देन तो स्मय जड़े से 2:37 कार्यक्रम चोइया न तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्ने जुड़ी सकते। तशो तो कार्यक्रम दे सफर च जुड़ने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है सभी तो तक पहुँचाना है, क्योंकि नंबर तो तक पहुँचाया होगा ताई तो इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जिड़ा से ज़रूर करी सकते। कने तो जो भी इंतज़ार जिड़ा है से जरूर रहेंदे कि कालू दिया तो इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न कने जिड़ा तो दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशां न तिना जो सुनते न। तो नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर तो कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है। तशो तो दो पल दा जिड़ा गुस्सा है से हज़ारों गम जिड़े से हाँ जो देख रही जानते हैं। प्यार भरा जिड़ा रिश्ता है सभी यहाँ दा बिखरी आंदा है। हर कोई अपनी जिंदगी च क्या चाहता है, प्यार भावना रिश्ते जिड़ा न से प्यारे ने चलन ताई अच्छे लगते न। प्यार भरा जिड़ा रिश्ता है से बिल्कुल बिखरी आंदा है कने जल तक अहाँ जो होश होंदी है तल तक जिड़ा वक्त है ना से अहाँ दे यानी कि वक्त तो अपनी रफ्तार कने चले आंदा तो से समय जिड़ा है से आए निकली आंदा है। तो खुश रहने दा सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मंत्र यही है कि जिड़ा हाँ जो मिलिया तिशी हाँ जो संतोष जिड़े से रखना चाहिए। कने अगर कुछ पाने तो पाने वास्ते हाँ जो क्या करना चाहिए? पाने वास्ते हाँ जो मेहनत करना चाहिए, जी जान लगाई करी मेहनत कर दी न ताई यहाँ सफलता जिड़े से हासिल करी पाते न कने ताई यहाँ खुश जिड़े से रही पाते न। तशो तो बरसात का मौसम चलिया कने ये मौसम जिड़े से कुथी ना कुथी बेहतर खास भी होंदा पर इस मौसम च अपना जिड़ा ख्याल है सभी ज़्यादा रखने की जरूरत होंदी। मौसम के अनुसार अगर अहाँ चलते न तो जरूर अहाँ सारे ही काम अच्छे तरीके ने करी पाते न। अगर तो हाँ पेड़ जो चढ़ा देन तो पेड़ जो भी थोड़ा ध्यान ने चढ़ना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है फिसनल जिड़े से फिसनल जरूर हो जाती है। तो किसी कने अगर हाँ पेड़ जो चढ़ते न तो ध्यान ने चढ़ना है कने अपना जिड़ा ख्याल है से जरूर रखना है। कने जामुन का नवा तो हाँ जरूर लगाई लिया होना है क्योंकि जामुन का जिड़ा सीजन है जमणुआ का जिड़ा सीजन है से जरूर चली पे है। कने जमणुआ खाने दे क्या क्या फायदे न, इस फ्रूट खाने दे क्या क्या फायदे न, जिड़ा अहां दा दिल दा स्वास्थ्य है सभी बिल्कुल ठीक रहंदा है। कने बाकी जिड़ा अहां दी त्वचा है सभी अच्छी रहंदी है। कने हर कोई ये चाहता है कि अहां दी जिड़ा त्वचा है से बेहतर सुंदर दिखे। तशो तो सुंदर दिखने वास्ते थोड़ा दिया अगर अहां मेहनत कर दें जमणुआ वास्ते थोड़ी दी मेहनत लगती है। मैं तुह जो पहले भी बोलिया कि अगर तुह पेड़ा पर चढ़ देना तो जरूर ध्यान ने चढ़ना है कने अपना जिड़ा ख्याल है से जरूर रखना है। इसी ख्याल कने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी जरूर अगे बढ़ाना है कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात करी सकते। अश्विनी जी फेसबुक लाइव कने जुड़े न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है क्योंकि शुरुआत अगर अहाँ एक प्यार भरे नमस्ते करने कर दें तो कुछ ना कुछ जिड़ा जिंदगी दा सफर है से और भी प्यारा जिड़ा से लगता है।
कशो तो गलबात इन्नी जारी रहनी है, पर गीत संगीत जड़ा है सभी तुह तक पहुँचाना है। चलते न फरमाइश की ओर, तुह सारे भी सा प्यारी दिया फरमाइश जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

माटी दी मह कार्यक्रम तो हाँ सारे सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो हाँ सारे सुनया ये प्यारा दया गीत प्यारी दी फरमाइश दर्शो तो जनगणना जड़े से ड्यूटी ते पहले जड़े से स्कूल जड़े से जरूर आना पौना क्योंकि जनगणना जड़े से जनगणना दे दौरान अगर हाँ ड्यूटी जड़े से पहले आंदे न ये जड़ा न्यूज़ है या जानकारी है तुह तक पहुँचाई है कने अगर तुह शिमला जाना चाहते न या शिमला जाने ते पहले अगर तुह जड़ा बुकिंग करवाते न पार्किंग जड़ा बुकिंग है से तुह जो पहले ही करवाना पौनी है दर्शो तो तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गल बात जड़े से जरूर करी सकते इसी गल बात कन्ने हाँ फिरी ते जड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे थे जमणुआ दी कन्ने तो हाँ सारे भी जमणुआ दा जड़ा नौ है से जरूर लगाई ले आना है कन्ने दे फायदे क्या क्या न स्किन जड़े से हेल्दी आंदी रहती है कन्ने ज़रूर हर कोई चाहता है कि अहाँ अपनी स्किन जो हेल्दी रखन कने अहाँ दा जेड़ा स्वास्थ्य है सभी हेल्दी रहे भजन यानी कि भजन जेड़ा से अहाँ ज़रूर इतने घटाई सकते हर कोई चाहता कि अहाँ अपना भजन जेड़ा से ज़रूर घटान ता जामुन या जमनू जेड़ा न खाई कर तो हाँ अपना भजन जेड़ा से ज़रूर घटाई सकते कने जमणुआ च जड़ा फाइबर भरपूर मात्रा च होंदा ता इसी कारण जड़े से अगर तुह चाहते हैं कि वजन तुह अपना घटाना है वैसे भी हर कोई यही चाहता है कि वजन घटाने दे क्या फायदे हल होन कने वैसे भी ये नेचुरल चीज़ा न ता इना जो खाई करी अहाँ अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखी पाते हैं ना कने थोड़ा दिया अपना जड़ा जिंदगी का सफर है उस जो भी इंजॉय करी पाते हैं अगर तुह जो बचपने दिया जेड़ा याद न जरूर ताज़ा आई होनिया न क्योंकि ये दिन जेड़ा न से बड़े प्यारे होंदे कने बचपन तो हर कुसी दा प्यार है तो इसी गल बात कने अहां अग्गे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न अगली फरमाइश अहां पहुँचा दे न पिंकी जी तक तुह सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये भजन दिल फुलां दा बनाया मेरी माँ, फुलां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ। तां जरूर

0: ये भजन बड़ा प्यारा था, क्योंकि फुलां दा जिहड़ा सौंदर्य है ना, फुलां दी अहां गल करिए तां हर कोई फुलां ते मनमोहित जिहड़ा है से जरूर होई जांदा है। कन्ने अहां जो भी शौक हुंदा कि अहां अपने घर है फुल लगान या तिना फुलां दा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखन, तां जरूर तुहांदा शौक भी है फुलां दा ख्याल रखना या तिना जो लगाना, तो जरूर अपने शौक जो पूरा करा। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी, हां जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दी, कन्ने तुहांदा नां की है जी?
1: मैं जी खन्यारे से, पुरना मेरे का वीर
0: है जी। खन्यारे ते बोला देना जी।
1: जी
0: ता कुंडिया गीत तुहां सुनना चाहेंगे जी, इसमें जेड़े से हाल बड़ा थोड़ा दे है।
1: माता भरमाणी है भजन सुन
0: जी, माता भरमाणी दा भजन सुनना है तुहां।
1: हां जी
0: जी, जरूर तुहां दी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद जी तुहां
0: जी। तशो तो जरूर हां ए फरमाइश पहुंचा दें तुहां तक, तुहां सारी भी इस फरमाइशा जो इस भजने जो जरूर इंजॉय करा।

ये अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना दी थी अपनी रेडियो तो शशि कहने। इस कार्यक्रम का जो सफर है उसे तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक।

कने अपना ख्याल भी जरूर रखा, क्योंकि अपना ख्याल रखिए ताई तो तुहां बाकियां दा जिहड़ा ख्याल है से रखी सकदे। तो तुहां सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है। बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये ले।
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: देखो,
9: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

नमस्ते नमस्कार सभी हो मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ हूँ सचिन कपूर हाजिर बुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गपा बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन। कैसे तो है सब उम्मीद करनो तो सब ठीक बुणे खरे बुणे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हिन। और हमेशा बोल लो कि तुंदा सभी हो पहला दोस्त गया सो तुंदा अपना शरीर और अपने शरीर जो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने वास्ते बिल्कुल वर्कआउट तो करना ही चाहिए सोता और जरूर करूंगा रहा। चलिए जी वर्कआउट भी जरूरी है लाइफ में और पिटारा आंसू गीता रह गया जरूर खोलना। आइए जी सभी पहले आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा पिटारे थो गीत कटी लेंदेन और हुनंदेन तुसुओ ये गीत।

बहुत प्यारे दे गीत श्रोतों। और चलिए अब कार्यक्रम मंज असु गल करनी है आज श्रोतों एजुकेशन रे बारे में। जी बिल्कुल, आजकल जो खास करिंदे बच्चे न जो कि फोन रा बड़ा बड़े क्रेज है और जहने लॉकडाउन लग रो थो श्रोतों तहने ऑनलाइन क्लास अगे न सो लगना शुरू हुई तथो बाद किया सो बच्चे का ज्यादा ही क्रेज किया सो फोन नो लेकर ही भुजगो बच्चे ज्यादा ही फोन जो लेकर ही कहन सो बड़े सीरियस नजर इंदे न मतलब कि बस तिन्यो फोन चिंदा खंदे फोन उड़दे फोन सुनदे फोन और फोना मंज एजुकेशन किया सो चलो तहने तब हालात ऐसे थी कि करना पे लेकिन आज हालात ठीक नींद है। आज भी बच्चे कहन श्रोतों सो एजुकेशन री किनारी ध्यान ना करी करी किया सो फोन की किनारी ध्यान कर दें। आज असु इस टॉपिक में जानना इस कार्यक्रम में जानना कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है असु वास्ते। आइए श्रोतों बिचा बिचा असु गीतरा पिटारा गया सो भी खुलता है रहना है हुन दे ने गीत।

FM 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून गुड रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने का पगन सो इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे रेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन सभी हुन्ने वाले रा सभी श्रोतागण रा आइए श्रोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदन और हेरा शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण खासकर युवा वास्ते बच्चे वास्ते और असु वास्ते भी बोलना चाहनु जो की पढ़ाई लिखाई री कोई उम्र ना मुंदे जस उम्री है तुसु लगा के असु शिक्षा के असु ग्रहण करना चिंदे या हगू पढ़ना चिंदा तो सो तुहे कंटिन्यू कर सकते हैं शतो शिक्षा के असु इम्पोर्टेंट भी है असु सब भी वास्ते शतो है ना एक ज्ञान कौशल और सही सोच के असु प्रदान कर दे हा शतो जस तो व्यक्ति जो बेहतर नौकरी व अवसर भी मिलता है फैसला लेने में क्षमता बढ़ दे है व्यक्ति री है ना तुसु कोई भी फैसला लेना था तुम्हें जो क्षमता सो बड़ी गाने हा शतो है ना तुम्हें दायरा के असु बड़ी और समाज में सक्रिय भूमिका किया सो भी एजुकेशन निबंध हासिल हो आइए कार्यक्रम मंच एंजॉय कर दें ये गीत

और सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और कार्यक्रम मंच तो सब बन रहे बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन आगमो के फिर सभी होने आए रहा आइए सो तुम कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू लेकर ही चल देन और कार्यक्रम मंच गल बात चल रही आज एजुकेशन जो लेकर शिक्षा जो लेकर शिक्षा के सो अंधविश्वास और भेदभाव जो खत्म कर दे जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधविश्वास में भी बहुत सारे मनो के अनसो रहते हैं, भेदभाव में भी जाति जो लेकर के अनसो भी आजकनी रेट में बड़े सारे मनो के अनसो रहते हैं, जाए सो यूथ ही को ना वो है ना सुरंदा है। एजुकेशन इन चीजों भी खत्म कर दिया, नागरिक जो त्यारे अधिकार रे प्रति की आसो जागरूक कर दिया, त्यारे कर्तव्य रे प्रति की आसो नागरिक जो आम नागरिक जो की आसो जागरूक कर दिया शिक्षा शुभ और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी किया सो योगदान कर दिया सोहा शिक्षा शुभ ते विलिया एजुकेशन कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट आसो सभी वास्ते है। जो बच्चे और जो युवा सोचते कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, नौकरियां लगेगानी यही है बुझगाना, नौकरी बेशक लग अच्छा लेकिन एजुकेशन के शो तो सो कंटिन्यू करना चाहते हैं। बड़ा विकास बुंदा अपना समाज रा भी बुंदा, अपना भी बुंदा, परिवार रा भी बुंदा है शो तो। कार्यक्रम जो हगू लेके चल देन खोल देन पिटारा कोड और हुनन देन ए प्यारा देगी।

श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर और हूँ सचिन कपूर। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा रहा महत्व श्रोतों ज्ञान और कौशल शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान कर दी हा श्रोतों जत्थों व्यक्तिगत जीवन में किया चुनौती सामना करने भी किया सो समस्या व समाधान करने में सक्षम बुंदा हा इंसान श्रोतों है ना बेहतर जीवन मुलदा हा श्रोतों शिक्षित मनु जो बेहतर वेतन वाली नौकरी मुड़ी पंदी ने है ना और त्यारा जीवन स्तर किया सो सुदृगंधा अगर कोई गरीब बारा बच्चा श्रोतों सो बेहतर पड़ेगा या कोई भी फैमिली में बच्चा जो बेहतर पड़ेगा होता सेरा अपना जीवन भी बेहतर गुणा सेरे सोगे सोगे सेरे परिवार रा जीवन किया सो भी बेहतर बुचिगंदा श्रोतो और अगर तो बेहतरीन नौकरी तो पिले फिर इतों बढ़िया क्या बोल सकता सुकून री सारी उम्र तुम दे निकलनी है ये गल्ला तो सुबह और किसी भी प्रोग्राम में भी ना होने जो मोलना श्रोतो या किसी भी रेडियो स्टेशन में ना होने जो मोलना सिर्फ तो सुबह वेड़ी गुंजन में होने जो मोड़ कर दी और खासकर अपनी गदयाली भाषा में होने मोड़ कर दी तेरा मतलब ये सीधा तुम्हें दिला अंदर की गल बसु कर दी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की जानकारी मिलते हैं शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करते हैं श्रोता और अपने जीवन रे बारे के सो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वास्ते स्वतंत्रता देंदे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हर किसी इंसान वास्ते हर किसी व्यक्ति वास्ते तो आइए श्रोतों कार्यक्रम जो भरंदन थोड़ी करी और हगो और मजे चु कर देना आइए जी फराटी फराटी सोगी सोगी लंदन उन दिन गीत

श्रोतों कार्यक्रम सचिन कपूर सो के हुनु गर्दन इंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है। मौके फिर सभी हुनने वाले रा हार्दिक अभिनंदन है। हाँ जी कार्यक्रम जो लेकर चलता हूँ थोड़ा करी और हगो सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा रा महत्व श्रोतों में बड़ा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाज रा विकास। जी बिल्कुल, शिक्षा के आसो समाज जो विवेक समझ और संपूर्ण थों भरे दिन देहा जत्थों के आ सो समाज रा विकास मुंदा और समाज रा विकास के आ सो बहुत अहम आ बहुत जरूरी है। श्रोतों नागरिक जागरूकता श्रोतों नागरिक जो त्यारे अधिकार है त्यारे कर्तव्य है त्यारी जिम्मेदारी री भावना सिखंदा हा तिन्यो समाज में सक्रिय और उपयोगी भूमिका के करे निभाने सो सिखंदा हा। नागरिक जो जाति रे प्रति जागरूक करता है भेदभाव के असो खत्म करता है श्रोतो नागरिक अंदर के आक इंसान तो हर घर पैदा बंदा लेकिन श्रोतो नागरिक अंदर शिक्षा के असो इंसानियत भी जगंदे हा दरिंदगी जो के असो शिक्षा खत्म करते हा श्रोतो तुसो हो समझ सब कुछ बंदे हा। बहरहाल कार्यक्रम जो लेके चल दे थोड़े करे और हगू और हूं दिन ये प्यारे दिया गीत।

सो तो आज के कार्यक्रम में तो है सभी एजुकेशन रे बारे जितना भी है अक्की घंटे दस से सकते थे सो है तो सो दस हुआ हेरा शिक्षा के एजुकेशन के सो सकारात्मक योगदान है तुंदे जीवन में, सकारात्मक सोच है तुंदे जीवन में और ऐसा सोच जो बढ़ाना तुंदा काम हा कसकी हो रही रहा काम नहीं कजो की पढ़ना तो तुसो पहना है सो तो व्यक्ति जो जिम्मेदार और नैतिक सिखंदे हा शिक्षा ताकि सो समाज में सकारात्मकता लेकर सकारात्मक सोच किया सो लेकर सकारात्मक योगदान किया सो व्यक्ति दिया जो वेल एजुकेटेड हा। चलिए श्रोताओं तो आऊँ सचिन कपूर ले लेनू तो सुथो इजाजत गदे गदे वाला अच्छा नो बाबूडे री सेवा कर दे रहे और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सो एजुकेशन जो कैरी ऑन कर एजुकेशन जो अपू सो गे रखा श्रोताओं और पढ़ते चलना। नमस्ते धर्मशाला।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस

0: उस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
3: हाँ बोलिए।
2: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
3: 10 लाख? सच्ची?
2: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
3: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
2: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
3: ओके।
2: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
3: अच्छा।
2: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
3: अच्छा, ये लिंक?
2: यस सर।
4: मछली तो फंस गई। शिंगे
5: देखो,
4: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
6: चलो बच्चों, खाना लग गया। पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
7: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
6: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती है सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन्स और मिनरल से ये सब है हरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
8: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
9: हाँ बिल्कुल।
8: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
9: पूछो।
8: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
9: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
8: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
9: हाँ, तुम्हें कैसे?
8: बस गेस कर रहा था।
9: अरे गेस भी
10: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

गुड इवनिंग धर्मशाला जी। श्रोता हो गया है कार्यक्रम शुरू। आपकी पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। और मैं आपकी जानी पहचानी आपकी रेडियो हम सफर ज्योति पठानिया।

तो आज है 4 जुलाई सन 2026। मुझे याद है पहली तारीख को ही हम मिले थे सुबह के वक्त, यानी कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में। और अब हमारी संध्याकालीन सभा आज की आरंभ होती है।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। और उन सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का ये दिन मना रहे हैं, यानी कि 4 जुलाई उनके जीवन में बहुत महत्व रखती है किसी भी वजह से। और हाँ, एक खुशी की बात और भी है कि अब वीकेंड हमारा शुरू हो गया है। कल है रविवार और आप करेंगे मज़े, तो आज बड़ी ही चैन की नींद आप सोएंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को तो पूरा सुनेंगे आप, जो कि रहता है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक।

जी श्रोताओं, अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का पहला गीत है, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम उस अनदेखी शक्ति का जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं। अब कई लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन कई मानते भी हैं, तो हम शुक्रिया अदा करने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आवाज़ है जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है शिखर।

जी बिल्कुल, ये ईश्वर ही जानता है कि किसका शिखर कहाँ पर है, यानी किसकी मंजिल कौन सी है। और हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अनूठा है, इस बात को तो मानना ही होगा। और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

जगजीत सिंह की आवाज़ में भी शिखर फिल्म का गीत आपने सुना और हमने उस परम शक्ति को धन्यवाद कहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि साथ साथ में आपने भी इस बात को महसूस किया होगा या आपने भी अपने अपने तरीके से, जिस भी तरीके से आप उसे धन्यवाद कहते हैं, प्रेयर करते हैं, साथ साथ में आपने भी की होगी। और अब आ जाते हैं इस समय के, यानी शनिवार के 4 जुलाई के इस समय के तापमान पर। धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसा तापमान बना हुआ है? देखिए, वैसे जब मैं घर से यहाँ तक चल के आई हूँ तो बारिश जो हो रही थी वो बारिश तो बंद हो चुकी थी काफ़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले बंद हो चुकी थी। और जितना भी गीला गीला सब हो गया था ना ऊपर घर की छत, यानी लैंटर वगैरह सब कुछ, वो धीरे धीरे सूख रहा था। सूरज देवता अब ढलते समय निकल आए थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी 19 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। और साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि हाँ बारिश है, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है बारिश हो रही हो। लेकिन मैं धर्मशाला की बात कर रही हूँ, तो धर्मशाला में इस समय, धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ह्यूमिडिटी है यानी हवा में नमी है वो 90% बनी हुई है।

और इसके साथ ही अगर मैं और बात करूं कि मौसम की मार कहां कहां पर पड़ी है, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। हिमाचल में वैसे तो मानसून की रफ्तार फिलहाल थोड़ी धीमी ज़रूर है, लेकिन आज जैसी बारिश हुई है वैसा लगता नहीं है कि धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जो कि पिछले कई दिनों से जारी ही है। पहले 6 तारीख तक थी, लेकिन अब मौसम केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 9 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, और विशेष रूप से 6 और 7 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश यानी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। और 7 जुलाई को इस अलर्ट में हमीरपुर को भी शामिल कर लिया गया है। और अगर हम जनजातीय ज़िला किन्नौर की बात करें, तो वीरवार को बारिश के कारण चोलिंग में स्कूल के पास अचानक बाढ़ आई, जिससे कि बाढ़ के साथ भारी मात्रा में आया हुआ जो मलबा है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर करीब 30 मीटर हिस्से में जमा हो गया, जिससे कि मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। और ये भी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से और इन छोटी मोटी बाढ़ों के चलते ये जो मलबा आ जाता है सड़क पर पानी के साथ साथ में पहाड़ों से खिसक खिसक कर, या यूं कहें कि पहाड़ भी साथ साथ में ही खिसक आते हैं, तो उसके चलते तकरीबन 50 सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो इसीलिए हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि वैसे तो चलो ये बरसात के दिन हैं और बरसात के दिनों का एंजॉय भी करना चाहिए, हर एक मौसम का अपना एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सावधानी से हमें ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अब देखो कह रहे हैं 12-13 जुलाई से बच्चों को भी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो अब बच्चे जो हैं वो घर में बैठेंगे, मानेंगे तो है नहीं कि हम घर में ही रहें, और बच्चे पहले छुट्टियों में क्या करते थे और अब क्या करना चाहते हैं उस पर भी हम कार्यक्रम में आगे आएंगे। फिलहाल बातें जब हमारी चलती हैं ना, तो बहुत लंबी लंबी होती चली जाती हैं, और हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि शायद हो सकता है आप गीत के इंतज़ार में भी होंगे, तो चलिए आपको गीत भी सुना देते हैं। रतनदीप फिल्म का ये गीत है आशा भोसले की आवाज़, और सुनिए इस गीत में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो तो कैसा होगा। गीत में बड़े अजीब अजीब से ख्वाब हैं कि अगर ये हो तो ऐसा भी हो सकता है, तो क्या क्या ख्वाहिश की गई है इस गीत में, क्या कभी आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं, सुनिए।

जी दोस्तों, बारिश के दिनों में अक्सर आसमान में काले काले घने बादल छा जाते हैं, जिससे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा और सुहाना सा एहसास होने लगता है। आज आपने फील की है बात, तो ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया। आप कह सकते हैं कि मानसून ही वो मौसम है जो गुलजार साहब की इस ख्वाहिश को सच करता है, जहाँ सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और दिन भी रात की तरह सुकून देह बन जाता है।

तो बारिश का मौसम इंसान को बाहर की भागदौड़ से रोक करके घर के अंदर खिड़की के पास अपनों के साथ बैठने पर मजबूर करता है। और इस मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ जब कोई ख़ास इंसान पास हो तो वक्त का पता नहीं चलता, और ये गाना इसी बात का प्रतीक है कि बारिश में वक्त की रफ्तार आपके साथी की मौजूदगी तय करती है।

बारिश की बूंदें जब सूखी धरती और कलियों पर पड़ती हैं तो हर तरफ एक जादुई महक, सौंधी खुशबू या पटचोर फैल जाता है और प्रकृति खिल उठती है बारिश के मौसम में। इस गाने को सुनना ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इंसानी जज्बातों को जुबान दे रही हो और चारों तरफ फूलों और खुशबुओं की रात सज गई हो।

तो बारिश के मौसम का जो मौसम है हर इंसान के अंदर के शायर और खोए हुए ख्वाब को जगा देता है। इस मौसम में खिड़की के बाहर गिरते पानी को देख करके दिल में कई काल्पनिक इच्छाएं जन्म लेती हैं और ये गाना उसी दिमागी सुकून और रुमानी ख्यालों की उड़ान को बयान करने के लिए सबसे सटीक जरिया है।

तो दोस्तों, गुलजार साहब ने तो सिर्फ ख्यालों में पूछा था कि ऐसा हो तो कैसा होगा, लेकिन ये बारिश का मौसम हर बूंद के साथ उस कल्पना को हकीकत बना करके हमारे सामने रख देता है। वैसे हम मानते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन हमने इस गीत के बीच बीच में दी है, आपके अपने ख्यालात होंगे, आप अपनी तरीके से सोचते होंगे, हर इंसान एक जैसा तो नहीं सोचता है ना। तो कभी कभी आप भी हमसे बात किया करें, हमारा नंबर है 7018117091। और अगर बात नहीं कर सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज तो कर ही सकते हैं, और साथ साथ में हमें फेसबुक लाइव भी तो देखते हैं आप, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं वहां पर कि आपको कैसे लगते हैं कार्यक्रम और गीत सुनना कैसा लगता है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कि आप हमसे कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, कि किस विषय पर हम आपसे बात करें, आपको कुछ बताएं बतियाएं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें तो आपको नंबर तो हमने बता ही दिया है। तो बहुत ही अच्छा जरिया है आपका, ऐप के द्वारा हमें सुन सकते हैं, रेडियो गुंजन ऐप है हमारी, और रेडियो के माध्यम से हमें सुन सकते हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और साथ में आप फेसबुक पेज पर भी हमें लाइव देख सकते हैं।

जी दोस्तों, इस मौसम में सूरज और बादलों के बीच लगातार आंख मिचौली चलती ही रहती है। सूरज बादलों के पीछे कभी ऐसे छिपता है मानो वो हमसे नजरें चुरा रहा हो, और मॉनसून की ये लुका छिपी ठीक वैसे ही है जैसे कोई प्रेमी अपनी साथी से शरारत में नजरें चुराता है, जिससे सामने वाले की बेचैनी और बढ़ जाती है। और इस गाने में पारसी शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, चेकुनम। चेकुनम मतलब अब मैं क्या करूं। तो बारिश का मौसम जब भी अपने साथ ये मीठी उलझन लेकर आता है, जब बाहर रिमझिम पानी बरस रहा हो तो दिल इसी कश्मकश में रहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, घर में बैठ करके पकोड़े खाऊं, खिड़की से इस खूबसूरत नज़ारे को निहारूं, या फिर सारा काम छोड़ छाड़ कर इस बारिश में भीगने निकल जाऊं। तो ये गाना इसी प्यारी उलझन का म्यूजिकल रूप है।

भाई, मॉनसून के मौसम में बादलों से बड़ा दगाबाज कोई होता नहीं। कभी आसमान में इतने घने काले बादल छा जाते हैं कि लगता है अभी मूसलाधार बारिश होगी, और वो फिर बिना बरसे ही आगे निकल जाते हैं। कभी धूप खिली होती है और अचानक बादल आकर के आपको पूरी तरह भिगो देते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये मौसम भी इस गाने की तरह ही नटखट और दगाबाज है, जिससे हमें प्यार और उल्फत हो जाती है।

पहले आपने सुना था काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और ये गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर अलबेला फिल्म से रामचंद्र और लता मंगेशकर की आवाजें।

तो शायरी और गानों में हमेशा से ये माना गया है कि बारिश की ठंडी बूंदें दिल के अंदर की आग यानी चाहत या विरह की आग को और ज़्यादा भड़का देती हैं, और जब बाहर मौसम ठंडा और खुशनुमा होता है तो किसी ख़ास की याद या उससे मिलने की तड़प दिल में एक शोले की तरह सुलगने लगती है। और ये गाना इसी विरोधाभास को दिखाता है कि बाहर भले ही पानी बरस रहा हो पर दिल के अंदर शोला भड़क रहा है।

इस गाने की लैटिन अमेरिकी यानी कैंटो कोंगा स्टाइल की धुन इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है कि पैर तो अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं। तो श्रोताओं, बारिश का मौसम सिर्फ उदासी या गंभीर रोमांस का नहीं होता है, ये खुलकर एंजॉय करने और मस्ती करने का भी होता है। और रिमझिम गिरती बारिश में जब आप इस गाने की तेज और जिंदा दिल धुन सुनते हैं तो ये मॉनसून के सुस्त और ठंडे माहौल को एक नई ऊर्जा भर देता है। ये गाना बारिश में भीगते हुए नाचने यानी रेन डांस के लिए एक परफेक्ट ट्रैक है।

तो बारिश के मौसम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी मदहोश कर देने वाली ठंडी हवाएं और आसमान में कड़कती हुई बिजली। तो मजरू सुल्तानपुरी ने इस लाइन में सीधे तौर पर बिजली चमकने और हवा के दीवाने होने का जिक्र भी किया है, जो पूरी तरह से मानसून का माहौल सेट करती है। ये हवा और बिजली ही है जो दिल में प्यार की आग को सुलगाने का काम करती है।

श्रोताओं, अब इसके साथ ले लेते हैं हम आज का विचार, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया है। गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीरे धीरे चला जाए। जैसे कि हम चल रहे हैं आज धीरे धीरे, और बस ऐसे ही चलते चलते ये समय भी समाप्त हो जाएगा, जैसे कि हर दिन गुजरता चला जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जल्दीबाजी में हमें कोई गलत काम नहीं करना है। अगर आराम आराम से करोगे तो सारे गलत काम भी सही होते चले जाते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ खबरें भी ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण संबंधी विज्ञापनों के खिलाफ एक्शन में आ गई है सरकार। और आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दे दिया गया है। अनुपालना करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया है 3 सप्ताह का समय हमारे प्रदेश को।

तो दोस्तों आज अगर कार्यक्रम में हमें समय मिलेगा तो हम आपसे बुज़ुर्गों की बात भी करेंगे कि बुज़ुर्गों की सुध लेना भी ज़रूरी है, और बरसात की बात तो हम कर ही रहे हैं, और ये भी आपसे कह रहे हैं कि साथ में एंजॉय भी कीजिए, तभी आपको प्यारे प्यारे से गीत सुनवा रहे हैं, और गीतों का सिग्निफिकेंस हम बरसात के इस मौसम के साथ भी दे रहे हैं ताकि आप इस मौसम को एंजॉय कर सकें। क्योंकि जब बहुत दिनों तक एक ही तरह का मौसम रहता है ना, तो कुछ मोनोटोनस सा हो जाता है और हम ना उदास से होने लग जाते हैं, तो हम फिर सोचते हैं कि अब कुछ चेंज ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो वही चेंज ढूंढते ढूंढते हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बस निकल जाती है, तो हम किसी भी चीज़ का एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर हर छोटी छोटी खुशी, हर छोटे छोटे पल को हम जीवंत तरीके से जिएंगे, जीना तो है ही, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ ढूंढिए कि जिससे आपके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाए।

और अब एक खबर और बता देते हैं आपको। बीबी राम जी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में काम हो गया है शुरू, और 30 दिन में प्रदेश के 4,866 कार्य दिवस दर्ज किए कर दिए गए हैं, और 816 काम शुरू भी हो गए हैं, जिनमें कि 1100 मास्टर रोल भरे जा चुके हैं। मनरेगा योजना का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने इसे CBG राम जी कर दिया है, जिसे हिमाचल प्रदेश ने भी अपना लिया है। अब नई अधिसूचना के अनुसार अब केवल आधार कार्ड KYC या किसी अन्य प्रमाण पत्र के अभाव में पात्र ग्रामीण परिवारों का आधार के बिना भी बन जाएगा जॉब कार्ड, और 15 दिनों में रोजगार पंजीकरण नहीं रोका जा सकेगा। वहीं आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाएगा। तो आवेदन लिखित मौरित्रक या फिर ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। ग्राम रोजगार सहायक वार्ड सदस्य या पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अहम बात यह है कि इस योजना में काम हासिल करने वालों की अब पोर्टल पर हाजिरी लगेगी।

पारस मणि फिल्म का की, तभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, मौसम है इस समय बारिशों का, मानसून का, और मानसून को आप सावधानी से एंजॉय कैसे कर सकते हैं। हमने कहा था कार्यक्रम में शुरुआत में कि आज उस पर भी थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे। तो हमें बरसात को एंजॉय भी करना है और सावधानियां भी रखनी हैं। और सावधानियां मेरे साथी यहाँ से हमेशा आपको बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैंने भी पहली तारीख को सुबह के वक्त आपसे कुछ एक बातें तो कही थी, शायद आपको याद होंगी। पहले तो यहाँ आने वाले लोगों से ये कहते हैं हम कि गर्मी का एहसास लिए आप वहाँ से आते हो और यहाँ जब आप उफनते हुए नदी नाले देखते हो तो आपको मन करता है कि हम उसमें चले जाएं नीचे और पानी के साथ खेलें या उसमें डुबकी लगाएं। लेकिन देखो, इतनी ज़्यादा आप सारी खबरें पढ़ते हो, सुनते हो, और आप लोग आदी नहीं होते हो इस चीज़ के कि आप इतने प्रेशर से, इतना तेज़ पानी जो बह रहा होता है, आ रहा होता है पीछे पहाड़ों से, और उसका जो वो ठंडा भी होता है, तो उसकी तासीर को आप सह पाएं। बॉडी उसे सह नहीं पाती है कई बार तो लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन कई हादसे उस तरह से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, आपके साथ बच्चे भी होते हैं, अगर आप खुद ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चों को कैसे मना करेंगे। और बरसात की फुहारें जितना सुकून देती हैं ना, उतनी ही सावधानी भी मांगती हैं। ये तो हम आपसे बार बार कह ही रहे हैं, बदलते मौसम, जो मौसम बदलता है तो पाचन शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगती है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। और वायरल संक्रमण, सर्दी जुखाम, पेट संबंधी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में हमें अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही है, घर वालों का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है। तो संतुलित आहार और संयमित दिनचर्या को सबसे प्रभावी उपाय जो है वो माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में गर्म ताज़ा सुपाच्य भोजन करना चाहिए, यानी कि ताज़ा ताज़ा बना हुआ। और जैसे कि मूंग की दाल की खिचड़ी, सूप, उबली हुई सब्जियां लाभकारी होती हैं। और भोजन में अदरक, हल्दी, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च जैसे मसालों का संतुलन भी, संतुलित प्रयोग अगर किया जाए तो वो भी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और वहीं अगर आप बासी भोजन खाएंगे तो, और ठंडे पेय पदार्थ आप पीते हैं, अधिक तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन से बचना भी बेहतर है। हालांकि हम ये मानते हैं कि अगर हमें बारिशों का एंजॉय करना है तो पकोड़े सबसे ज़्यादा जो है, लोग समझते हैं कि हाँ आज पहली बारिश हुई है तो आज पकोड़े बना लिए जाएं, तरह तरह के पकोड़े। और फिर ये जो सिलसिला है ना, ये इसी तरह से चलता रहता है। हम ध्यान ही नहीं रखते कि हमने पिछली बार पकोड़े कब खाए थे या फिर फ्राइम्स तल के कब खाए थे। बेशक ये जो चीज़ें हैं, हम ये कहते हैं कि बरसात के मौसम में ही इनका मज़ा आता है, खाना पसंद भी करते हैं, फरमाइश आ जाती है कि आज तो ये बनाया जाए, परंतु ये भी तो देखिए कि पाचन शक्ति इस समय हमारी ज़्यादा नहीं होती है, वैसे भी गर्मियों के दिन हैं। और उसके साथ अगर कहीं पानी गंदा पी लिया आपने तो फिर तो पूरा ही बंडाधार। तो अस्पतालों के चक्कर ना लगाने पड़े इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। और अगर आप खुद व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे तो बच्चे भी वही देखेंगे, वही सीखेंगे। और इस मौसम में भी गुनगुने पानी का सेवन आप कर सकते हैं। और बारिश में भीगने से बचिए, साफ सुथरे सूखे जूते वस्त्र पहनकर भी जो संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। वर्षा ऋतु का आनंद भी तभी है जबकि स्वास्थ्य आपका साथ देगा।
थोड़ी सी सतर्कता, संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या अपना करके इस मौसम को बीमारियों का नहीं बल्कि ऊर्जा और ताजगी का मौसम बनाया जा सकता है। और आगे हम कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आप किन किन सब्जियों से इस बरसात के मौसम में परहेज करें, और अगर खानी भी हो तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से धो करके, वॉश करके पानी से, और पानी भी वो स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी पानी ले आए और चलो जी सब्जियां धोई और बना ली, उससे भी आप बीमार हो सकते हैं। तो ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल एक और गीत की ओर चलते हैं।

देखो जी, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि बाबूजी धीरे चलना और हमारा आज का विचार भी यही था ना कि सही बातों के लिए अगर धीरे धीरे भी चला जाए तो भी बहुत अच्छी बात होती है।

आर पार फिल्म का गीत आपने गीता दत्त की आवाज में सुना। रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला।

0: एक सी लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और ये वक्त हो चला है अब 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: उद्घाटन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमी

से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और समाचारों के बाद हम हो गए हैं हाजिर करने आप सभी से बातचीत। तो आज के जो हमारे मुख्य 4 जुलाई की कुछ मुख्य बातें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। 1902 में भारत के महान आध्यात्मिक गुरु मनीषी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का निधन 44 वर्ष की आयु अल्पायु में ही हो गया था 4 जुलाई को बेलूर मठ में। और इसी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म आज ही के दिन हुआ था।

गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1898 में उनका जन्म हुआ था, आज ही की तारीख में। रेडियम की खोज करने वाली और दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पोलिश फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का निधन हुआ था 1934 में, आज की तारीख में।

और आज जन्मी थी नसीम बानो 4 जुलाई 1916 में। 40 के दशक की हिंदी फिल्मों की एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री रहीं। उन्होंने अपने मनमोहक अभिनय से भारतीय सिनेमा जगत में दर्शकों को दीवाना बना दिया था। अपनी खूबसूरती के कारण उन्हें सौंदर्य रानी भी कहा जाता था। हिंदी सिनेमा की एक और प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो नसीम बानो की बेटी हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में पुकार, अनोखी अदा और शीश महल शामिल हैं। बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में दिल्ली में हुआ था।

और आज भरत व्यास जी का निधन हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार थे। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनमें बचपन से ही काव्य प्रतिभा दिखाई देती थी। उन्होंने 17-18 वर्ष की आयु में ही गीत लिखना शुरू कर दिया था। उनका पहला गीत आओ वीरो हिल मिल गाए वंदे मातरम था। व्यास ने दो आंखें बारह हाथ, नवरंग और बूंद जो बन गई मोती जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। उनका निधन 4 जुलाई 1982 को मुंबई में हुआ था। चलिए अब इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का ये गीत है

तो दोस्तों इसके साथ साथ में हम बारिश की बात भी कर लें। गीत के साथ साथ बारिश की बूंदों के साथ अदरक इलायची या मसाले वाली चाय की चुस्कियां भी आप ले ही सकते हैं। और आजकल के मौसम में आपको जगह जगह पर भुट्टा भुनते हुए भी नजर आते होंगे। नींबू और चाट लगा मसाला लगा हुआ भुट्टा मानसून को दोगुना मजेदार बना देता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं इस मौसम में तो एंजॉय कैसे कर सकते हैं। खिड़की या बालकनी के पास बैठ करके बारिश की आवाज़ सुने और ठंडी हवा का आनंद लें। कई लोगों को ना अपने घर की छत पर, अगर वो टीन की छत हो, तो जब उस पर बारिश पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ में भी बड़ा मज़ा आता है। अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं, कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं, मॉनसून स्पेशल गानों की एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं और धीमी धीमी आवाज में उसे सुन सकते हैं। और अगर घर से बाहर ही जाना हो तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शहर के पास किसी हरियाली वाली सड़क पर ड्राइव के लिए जा सकते हैं। छाता या रेनकोट लेकर के किसी सुरक्षित पार्क में टहल सकते हैं और गीली मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू, वैसे अब तो सौंधी नहीं रही क्योंकि सौंधी खुशबू वो तभी आती है जब पहली पहली बारिश होती है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है।

तो दोस्तों मॉनसून में प्रकृति बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, जब आप अपने फोन से पेड़ों और बारिश की बूंदों की तस्वीर भी ले सकते हैं। बस इस मौसम में पेट की बीमारियां जल्दी होती हैं, इसीलिए स्ट्रीट फूड से थोड़ा सा दूर रहें। या अगर लेना ही है तो किसी ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं जहां पर कि आपको इत्मीनान हो कि वो बहुत ही अच्छे से सफाई से काम करते हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिजली कड़कने के दौरान कीमती उपकरणों को अनप्लग कर दें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको बरत करके आप मानसून का भलीभांति आनंद उठा सकते हैं।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

दोस्तों, हो गई है हमारी मॉनसून की बात भी, कि हमने आपको थोड़ा सा तो बता ही दिया है कि कैसे कैसे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी पूरी सावधानी बरत करके। और अब हम बात करेंगे कि मॉनसून के इस मौसम में हमें परेशानियां क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात कि कल हमने मनाया है प्लास्टिक मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दिवस हमने मनाया। और कल हमारे साथियों ने, मेरे साथी जो आरजीज हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें आपसे की, बहुत दिनों से कर भी रहे हैं इस विषय पर। हम पर्यावरण की बात तकरीबन हर कार्यक्रम में करते ही हैं किसी न किसी बहाने से। तो ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम करते हैं ना, ये भी तो तभी शुरू हुआ था जब हमें ज़रूरत हुई थी, यानी कि ज़रूरत जो होती है, आवश्यकता जो होती है, वही आविष्कार की जननी होती है। और यूँ तो हम कहते ही हैं कि विज्ञान जो है वो वरदान भी है, अभिशाप भी है, तो दोनों पहलुओं से हम इस बात को आज देखते हैं। अब मॉनसून में प्लास्टिक की बात कहाँ से आती है? वो ऐसे आती है कि जब आप देखते हैं अपने आसपास में नाले जो हैं वो भर जाते हैं और बाहर बाहर को उफनते हैं, तो वहाँ पर ये ही ज़्यादा कचरा फंसा होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक का ही होता है। तो इसलिए इससे निजात पाना तो बहुत ज़रूरी है अब हमको। अब होता क्या है ना कि हम अपनी ज़रूरतों के मुताबिक चीज़ें कर तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हम सोचते हैं कि अब इससे छुटकारा कैसे मिले हमको। तो चलिए हम उन दिनों की ओर चलते हैं जब प्लास्टिक बिल्कुल भी होता ही नहीं था। तो तब क्या होता था? तब होता था, हम होती थी हमारे पास कांच की बोतलें, हमारे कागज के थैले, कागज के लिफाफे, जो अभी भी कई जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो हमारी दवाइयां इत्यादि आती थीं, वो सारी की सारी जो कांच की छोटी छोटी शीशियों में, बोतलों में आती थी। लेकिन फिर किसी को लगा कि शायद ये वाला जो प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल करके देखा जाए, और फिर अच्छा भी लगा लोगों को, कईयों को, कि भाई अच्छा हुआ कांच से थोड़ा सा हमें विकल्प मिल गया एक, क्योंकि कांच की बोतल अगर टूटती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दवाई की पूरी ख़राब हो जाती है, या तेल है तो तेल गिर जाता है। तो इस तरह से फिर आविष्कार हुआ प्लास्टिक का। लेकिन अब फिर हुआ क्या दोस्तों, कि हो तो गया आविष्कार और हमें वो चीज़ अच्छी भी लगने लग गई, लेकिन आपको पता है ना कि जब कोई चीज़ नई नई आती है ना मार्केट में, तो वो होती है ओरिजिनल। उसके बाद की चीज़ें जो होती हैं उसमें डुप्लीकेसी आ जाती है, यानी कि उसका रेप्लिका बना दिया जाता है, और इस तरह से प्लास्टिक का भी रेप्लिका बना दिया गया। कई सारी जो कंपनियां आ गई मार्केट में, और कई सारी कंपनियां जो हैं वो प्लास्टिक का स्वरूप भी थोड़ा सा चेंज हुआ, और वैसा प्लास्टिक बनने लग पड़ा जो कि अब हमें सदियों तक नुकसान पहुंचाने वाला है। और हमारे फेसबुक पेज से एक हमारी ऑडियंस हैं वो हमें देख रहे हैं, लेकिन कुछ उर्दू में लिख रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कृपया करके। और आपका स्वागत है, जितने भी लोग हमें फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। तो हम ये कह रहे थे कि अब इस प्लास्टिक से निजात पाना, वैसे हम ये तो नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं, बस हमें थोड़ी सी अपनी अब ये जो आदतें हैं ये चेंज करनी होंगी, जो कि हम बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गए हैं इस प्लास्टिक के ऊपर, कि अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो हम
लिफाफों में कोई चीज़ जो है वो हम रैप भी नहीं कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं था। पहले भी लोग जीते थे और पहले भी इन्हीं सब चीज़ों के बिना दुनिया चली थी। तो बात तो कीजिए, कभी अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए, इन गंभीर विषयों पर जानिए कि वो कैसे रहते थे, कैसे जीते थे उस समय जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी। और भी बहुत कुछ नहीं होता था, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे हम जानते हैं बहुत कुछ, अच्छा भी सीखते हैं, बहुत कुछ बुरा भी सीखते हैं। जो बुरा करने वाले लोग हैं वो वैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी तरफ जाने वाले लोग वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हर एक बात की, हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम करना होगा। और मैं तो सच बताऊँ, मेरे घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हम अब क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे नमक है या दालें हैं, अगर उसी रैपिंग में आती हैं तो वो हमें ख़रीद के लानी पड़ती हैं, ज़रूर हम लेकर के आते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि वो कूड़े में कम से कम जाए, हम या तो उसका कुछ और तरह से इस्तेमाल कर लें, और या फिर अगर हमें देना भी है तो किसी इस तरह से उसे दें ताकि वो बाकी और कूड़े में मिक्सअप ना हो, कहीं पर भी लैंडफिल में ना जाए, कहीं पर भी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके समीप ना जाए। तो इस तरह से उसका निपटान भी हमें करना है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, रील्स देखते हैं लोगों की, इतना इतना कचरा, और वो उसमें भी ज़्यादा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। कहाँ जा रहे हैं हम? चलिए इस पर बात करेंगे हम और भी कार्यक्रम में, अगर हमें समय होगा तो ज़रूर। लेकिन अब एक और गीत की ओर चल रहे हैं।

बरखा फिल्म का ये गीत है। लता मंगेशकर की आवाज। और कुछ दिन पहले ही ये गीत बहुत वायरल भी हुआ था।

फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला।

हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के कचरे की इस मानसून के सीज़न में कितनी बड़ी परेशानी है। सड़क पर फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें और रैपर्स

बारिश के पानी के साथ बह करके नालियों और गटर में फंस जाते हैं। फिर नालियां बंद होने से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और शहरों में अचानक फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। फेंकने वाले प्लास्टिक के कप, खाली बोतलें और टिफिन के डब्बों में बारिश का साफ पानी जमा हो जाता है। ये ठहरा हुआ साफ पानी ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के पनपने के लिए सबसे मुफीद जगह बनाता है।

कारण नालियां जाम होने से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और घरों में घुस भी जाता है। और ये बातें तो बहुत सारे लोग अभी महसूस भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर सीवरेज के ढक्कन जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। उसकी और भी बहुत सारी वजहें हैं, वो बातें हम फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे ज़रूर बताएंगे, करेंगे वो बात भी। और ये जो गंदा पानी है वो पीने के पानी की लाइनों में मिल करके उसे भी दूषित कर देता है, जिससे कि डायरिया, हैज़ा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। और बस इसी वजह से ये जो मानसून का सीज़न है ना, इसमें ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं। और बारिश में सड़कों पर भोजन की तलाश में घूमने वाले गाय और कुत्ते कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को चबा जाते हैं। उन्हें तो कुछ ना कुछ खाना है ना, अगर हम नहीं देंगे तो वो यही करेंगे। गीली प्लास्टिक पेट में जाकर के उनकी चिपक जाती है, जिससे कि हर साल मानसून में सैकड़ों लावारिस पशुओं की दर्दनाक मौत हो जाती है।

और तेज़ बारिश और नमी के कारण प्लास्टिक का कचरा छोटे छोटे कणों में टूट करके मिट्टी और भूजल में मिल जाता है। जहरीला माइक्रोप्लास्टिक आखिरकार हमारी पीने के पानी और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। श्रोताओं, हमें करना क्या है इसके बारे में करेंगे आगे बात।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत बाप रे बाप फिल्म से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, बिल्कुल हम रहें या न रहें, लेकिन ये दुनिया यूं ही रहनी चाहिए। परंतु किस रूप में आप इसे देखना चाहते हैं? भाई, हम तो देखना चाहते हैं खूबसूरत, हरी भरी, जैसे कहीं कहीं पर हमें दिख जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन से जो ये प्लास्टिक का कचरा है, या यूं कहीं प्लास्टिक है, इसे हटाना होगा। सब्जी या राशन लेने के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो घर से हमेशा कपड़ा या फिर जूट का थैला लेकर के निकलें, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते थे। और गीली छतरी को रखने के लिए भी प्लास्टिक की पन्नी के बजाय अगर वाटरप्रूफ कपड़े के बैग का हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। और प्लास्टिक के सूखे कचरे को गीले कचरे के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं, ताकि वो नालियों में ना बहे।

हमने आपको ये भी बता दिया कि प्लास्टिक केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी खतरा है। समुद्रों में हमारी मछलियां मर रही हैं, सड़कों पर हमारे पशु मर रहे हैं, और पक्षियों को थोड़ा बहुत पता होता है तो वो उसमें ज़्यादा मुंह मारते नहीं, लेकिन कई बार वो भी उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। तो हर तरह से नुकसान है पर्यावरण को इसका, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा नहीं पूरा ही ध्यान हमें इसका रखना होगा। और सच में ये जो आगे आने वाला जो गीत है ना, वो भी कुछ ऐसा ही कहता है।

तकदीर फिल्म का ये गीत है गीता बाली की आवाज में। और ध्यान से सुनिएगा कि गीत कहता क्या है, और इसको अगर हम अपने इस प्लास्टिक से जोड़ करके देखें तो कुछ ना कुछ मतलब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आप अपने मतलब ढूंढिए, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि ये गीत कहता क्या है।

0: बना ले।
1: तो श्रोताओं, ये गीत कहता है कि बिगड़ी बात को सुधारा जा सकता है अगर आज हम आज भी सही तदबीर करें, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाएं और कचरे का सही प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट करें और रिसाइकलिंग को अपनाएं, तो हम पृथ्वी की बिगड़ी हुई तकदीर को बदल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने तो अपना मतलब निकाल ही लिया होगा इस गीत को सुन करके। अब हमारी तरफ से सुनिए।

अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसी सरकार या चमत्कार के भरोसे बैठने के बजाय खुद पर भरोसा करना होगा, और बदलाव की शुरुआत तो हम से ही होगी। एक दाव लगाना, यहाँ दाव लगाने का मतलब जुआ खेलना नहीं है, बल्कि एक साहसी कदम उठाना है। वो दाव है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से प्लास्टिक को पूरी तरह बाहर निकालने का जोखिम और संकल्प लेना। और प्लास्टिक की थैली को छोड़ करके कपड़े का थैला उठाना ही वो पहला दाव है दोस्तों।

डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों। कोई आपको देख रहा है, कपड़े का थैला लेकर के जा रहे हो, कैसा बना है कैसा नहीं बना है, जैसा भी है, जैसा भी आपको बनाना आया या जैसा भी आपको किसी ने गिफ्ट किया या आपने कहीं से खरीदा, बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए। बल्कि जो लोग प्लास्टिक के थैले उठा कर चलते हैं ना, शर्म उनको आनी चाहिए। दुनिया क्या सोचेगी इसकी परवाह बिल्कुल ना करो। अगर समाज में सब लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपको लीक से हट करके पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली विकल्पों को चुनना होगा। अपनी जीवन शैली को बदलने में हिचकिचाना बिल्कुल नहीं।

जी हाँ बिल्कुल, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। कर्म का उत्सव मनाता है ये गीत मूल रूप से इंसानी इच्छा शक्ति यानी ह्यूमन विल पावर की बात करता है। प्लास्टिक संकट कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, हम इंसानों ने ही इसे खुद पैदा किया है अपनी सहूलियत के लिए, वो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था।

0: लिखने से
1: तो जैसे इंसान ने अपनी गलतियों से ये तकदीर बिगाड़ी है, वैसे ही अपनी सही तदबीर यानी इच्छा शक्ति और प्रयास। पता है ना आपको तदबीर का मतलब? आपके विल पावर, आपके प्रयास, जो भी आप कोशिशें करते हैं तो वो आप कीजिए और फिर से इस धरा को खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को बचाने का रिमोट कंट्रोल आज भी हमारे हाथ में है। वैसे इस गीत को हम बहुत सारे संदर्भों में देख सकते हैं, बहुत सारे रूपक इसके हम ले सकते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में हम जब प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो हम इसी संदर्भ में इस गीत के बोलों को देखेंगे।
0: अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले।
1: जी तो श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर, जिसका कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि 7:45 हो चुके हैं।
2: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथू सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार होगी राज्य कार्य योजना, सर्पदंश योजना नोटिफाइएबल रोग। और सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र की गेहल पंचायत के लोगों ने बिजली समस्या के समाधान की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित संगठन की आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर मंच पर प्रदेश के जायज अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है, जिससे प्रदेश की आय के संसाधनों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और भाजपा की सीटें मौजूदा संख्या से कम होंगी। उन्होंने संगठन की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की है।
3: प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण को सब शामिल हो रहे हैं। ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगी और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी।
2: इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ता

0: को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की बैठकें नियमित रूप से सक्रियता से आयोजित की जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए वित्तीय मामलों में भेदभाव करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को हिमाचल को देश का अग्रणी प्राकृतिक खेती राज्य बनाने की दिशा में पूर्ण दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग को कृषि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने को भी कहा। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से वर्चुअल संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चंबा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महला के प्रधानाचार्य से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का अवलोकन भी करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारी व सरकार सीधे विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर सकेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष में करीब 227 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सोलन जिला में 15 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल सोलन सुबाथू सड़क मार्ग की मुरम्मत के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की DPR तैयार है और जल्द ही इसकी पहली किश्त जारी होगी।
1: सबाटू बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सबाटू से लेकर आगे पूरा परवानू तक ये सड़क जोड़ती है, करीबन 65 किलोमीटर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बजट का प्रावधान इसके लिए होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए करीबन 23 करोड़ रुपए की DPR जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है कि 23 करोड़ रुपए इसके लिए हम जल्द से जल्द जो है वो मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, शर्दा साहब के सहयोग के साथ इसमें स्वीकृत करवाएंगे और इमीडिएटली इसका कार्य जो है अगले कुछ दिन के अंदर इसको हम शुरू करवाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पर अपने संबोधन में कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हुई थी और बाद में उन्हें सरकारी कानूनों में शामिल किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बिल की सफलता को केवल कानून बनने से नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिज्ञासा, संवैधानिक निष्ठा और जनहित के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विधायी काम करने का आग्रह किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के लिए व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेशनल हेल्थ मिशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची के डॉक्टर जयदीप सी मेनन ने बताया कि जीरो स्नेक बाइट डेथ परियोजना देश के 7 राज्यों में संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में इसकी शुरुआत कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी और नूरपुर ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है।
2: हिमाचल में 2 ब्लॉक लिए हैं, एक तो ज्वालामुखी, दूसरी नूरपुर। सो ये प्राइमरली कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाना है और ये जो ज्यादातर लोग जाते हैं झाड़ू फूंक और दूसरी जो इलाज के लिए जाते हैं वो बंद करना चाहिए। इसके इलाज एक ही इलाज है, एंटी स्नेक वेनम। अगर सांप काटा हो, जहरीला हो, हिमाचल की हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इस भी अवेलेबल है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्पदंश कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि हिमाचल में स्नेक बाइट को अब नोटिफाइएबल रोग घोषित किया गया है और सर्पदंश के हर मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा।
3: एक बैच जो है अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी और बाकी की स्टेट्स ने भी इसको नोटिफाइबल कर दिया। यानी पहले स्नेक बाइट होता था तो कोई बताता नहीं था, अब कोई भी स्नेक बाइट होगा उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कानून के तहत उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है।
0: राज्य सरकार लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के बेली गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक अनुराधा राणा को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बदहाल सड़कें और खराब मोबाइल नेटवर्क भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ग्रामीणों ने टूटे पुल की उच्च स्तरीय जांच और सड़कों की मरम्मत व मोबाइल नेटवर्क की समस्या का समाधान 15 दिन में करने की मांग की है। उधर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की गहल पंचायत में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बार बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से गहल गांव में कई बार एक सप्ताह तक बिजली नहीं होती। उन्होंने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 23 केवी करने और इसे सड़क के किनारे स्थापित करने की बिजली बोर्ड से मांग की है।
4: पिछले 5 दिन से पूरा गांव अंधेरे में था और हमने बिजली विभाग से रिक्वेस्ट की जल्दी से जल्दी गहल गांव के लिए ट्रांसफार्मर भेजा जाए, और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर भी जरूर भेजा है। हमारे को दिक्कत ये आती है कि पिछले 40-50 वर्षों से जब से यहां पर ट्रांसफार्मर स्थापित हुआ है लोगों को उठाकर लगभग 500 से 700 मीटर नीचे खाई में ले जाना पड़ता है। हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो गहल गांव का जो ट्रांसफार्मर है वो सड़क के लिए शिफ्ट किया जाए।
0: राज्य वन विभाग ने इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में 8000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। वन बल प्रमुख डॉक्टर संजय सूद ने सभी वन मंडल अधिकारियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना पर बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने वित्त विभाग द्वारा पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने का सख्त विरोध किया है। शिमला से जारी एक बयान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि इस अधिसूचना से हजारों पेंशनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा मौजूदा कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम, इस पहल से शिक्षा व्यवस्था की होगी ऑनलाइन निगरानी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। सोलन सुबाथू सड़क के सुधार के लिए 23 करोड़ की DPR तैयार। हिमाचल में सर्पदंश से हो रही मृत्यु को रोकने के लिए तैयार होगी राज्य कार्य योजना। सर्पदंश योजना नोटिफाइएबल रोग घोषित। और सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र की गहल पंचायत के लोगों ने बिजली समस्या के समाधान की सरकार से की मांग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और कार्यक्रम में थोड़ा सा समय जो हमारे पास रह गया है, बस आपको एक संदेश दिए देते हैं इस गीत के द्वारा। जी हाँ, और ये ही सच्चाई है इस दुनिया की। धुंध फिल्म का ये गीत है, आप समझ गए होंगे कि कौन सा गीत अब आने वाला है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। और इसी के साथ ज्योति को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। फिर मिलूंगी जल्द ही आपसे किसी और दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर। कितनी बार कहा है? बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो? बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है? थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या?
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम। समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
8: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
8: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
8: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
8: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
8: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
8: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
9: मछली तो फंस गई। शिंगे और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
10: चलो बच्चों खाना लग गया।
11: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
12: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
10: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों

0: स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: हमारे गेस्ट भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: मेरे की खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती हैं सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
14: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
15: हाँ बिल्कुल।
14: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
15: पूछो।
14: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
15: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
14: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
15: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
14: बस गेस कर रहा था।
15: तुम्हारे गेस भी
16: कौन है? कहाँ से आते हैं?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो शोतो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
8: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
8: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
8: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
8: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
8: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
8: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
9: मछली तो फंस गई। शिंगे और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
10: चलो बच्चों खाना लग गया।
11: बट ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
12: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
10: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन? कहाँ से आते हैं?

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।